मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ, और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त नंदिनी मिश्रा। स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। उठिए, जागिए भाई, नींद को त्यागिए और देखिए कितनी नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई संभावनाएं, नई खुशियां, कितना कुछ आज की ये प्यारी सी सुबह आपके लिए लेकर आई है। और हो सकता है आपकी तरफ भी ढेर सारी बारिश हो रही हो, तो इन रिमझिम फुहारों के साथ, बारिश की बूंदों के साथ, नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ उठिए, जागिए, नींद को त्यागिए और आज के दिन का स्वागत कीजिए आंखें खोलकर, मन खोलकर, खुशियों के साथ, क्योंकि बहुत सारी खुशियां, न जाने क्या क्या आज के दिन आपके लिए लेकर आया है। तो उठिए, जागिए, ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ और जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रमों के साथ। फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले हैं, तो आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में

0: लगाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार। लखनऊ में अब सबसे पहले बात कृषि की, तो आज की कृषि चर्चा में चर्चा का विषय है मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रूपन रघुवंशी।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय मक्के की फसल आपके खेत में खड़ी है। जहां मक्के की फसल खेत में है तो सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से वैज्ञानिक डॉक्टर रूपन रघुवंशी साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां मक्के की फसल इस समय खेत में है तो सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।

0: नेवा डॉक्टर साहब, सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। जिन किसान भाइयों बहनों ने खरीफ में मक्के की फसल लगाई है, अगस्त के महीने में वो अपने खेत में तीन विशेष बातों का ध्यान रखें: कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण और खरपतवार नियंत्रण। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं इस महीने में किसान भाइयों के लिए।
1: तो इसके लिए नियमित रूप से निगरानी करनी होगी।
0: जी बिल्कुल, मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि वे नियमित रूप से अपने खेत की निगरानी करें और खेत उन्हें खुद ही बता देगा कि किस चीज की खेत को आवश्यकता है, खरपतवार नियंत्रण करना है या खेत में कोई रोग या कीड़ा लगा है उसका प्रबंधन करना है।
1: और साथ में भूख और प्यास भी मिटानी है।
0: जी बिल्कुल, संतुलित उर्वरक के प्रयोग से आप खेत की भूख और प्यास मिटा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, शुरुआत करें कि खर पतवारों का प्रबंधन कैसे हो मक्के की फसल में, क्योंकि इस समय फसल खेत में है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस समय जो मक्के की फसल किसान भाइयों ने लगाई है तो वो खरपतवार नियंत्रण के लिए नियमित रूप से खेत की निगरानी करें और खेत की निराई गुड़ाई अवश्य करें। जब मक्के की फसल खेत में लगाते हैं तो कायदे से किसान भाई को जमाव के 15 दिन के भीतर ही पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए।
1: तो दो निराई गुड़ाई अगर हो जाएगी तो खरपतवारों से खेत मुक्त हो जाएगा।
0: दो निराई गुड़ाई से खरपतवार से मुक्त तो नहीं होगा खेत, लेकिन हमारा जो खरपतवार है वो कंट्रोल में आ जाएगा, यानी नियंत्रण हो सकता है। और उसके अलावा भी अगर तीसरी निराई गुड़ाई करनी पड़े तो किसान भाइयों को वो भी जरूर करती रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मक्के की फसल है उसमें बीमारियां भी खरपतवार की वजह से ही आती है।
1: अब डॉक्टर साहब, वैसे तो बरसात का मौसम है, लेकिन फसल की प्यास बुझाने के लिए कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होंगी।
0: जी बिल्कुल, जो हमारी क्रिटिकल अवस्था है मक्के की फसल में तो वो प्रारंभिक अवस्था तथा सिल्किंग, जब दाने बनते हैं सिल्किंग से दाना पड़ने की अवस्था पर पर्याप्त नमी खेत में होना बहुत जरूरी है। अगर उस समय पे बारिश नहीं हो रही है तो खेत में नमी को बनाए रखने के लिए सिंचाई आवश्यकता अनुसार हमारे किसान भाई कर सकते हैं।
1: और वो भी हल्की सिंचाई।
0: जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई हल्की सिंचाई ही करें।
1: अब डॉक्टर साहब, फसल की भूख मिटाने की बात करें तो वैसे तो बेसल डोज में किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा दिए होंगे, लेकिन खड़ी फसल में कब कब कितना कितना उर्वरक देना है?
0: हमारे बेसल डोज में किसान भाई जानते हैं कि फास्फोरस पोटास तो हम पूरी मात्रा में देते हैं शुरुआत में, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी हम टॉप ड्रेसिंग भी करते हैं, उसका 1/4 भाग हम शुरू में डालते हैं और बाकी जो बचा हुआ भाग है उसकी टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मक्के की फसल देरी से लगाई है, तो जिन्होंने देरी से लगाई है उनकी सेकेंड टॉप ड्रेसिंग, जो हमारी यूरिया है उसकी सेकेंड टॉप ड्रेसिंग नर मंजरी बनने के समय पे करते हैं, उसकी आवश्यकता है। और जिन्होंने मक्के की फसल हमारी शुरुआत में ही या जल्दी से लगा दी है तो उनकी तीसरी टॉप ड्रेसिंग का ये समय है। तीसरी टॉप ड्रेसिंग दाना भराव के समय या नर मंजरी से आधा पराग गिरने के बाद करते हैं।
1: और पहली अवस्था कौन सी है टॉप ड्रेसिंग की?
0: पहली अवस्था बोने के, किसान भाई बोने के 20 से 30 दिन के बाद निराई के तुरंत बाद कर दें।
1: यानी पहली निराई के तुरंत बाद पहली टॉप ड्रेसिंग कर दें यूरिया की।
0: जी, यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग 20 से 25 दिन के अंदर तुरंत कर दें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों मेरा मोबाइल नंबर है 9458315495, 9458315495, 9458315495।
1: डॉक्टर रूपन रघुवंशी, आज आप कार्यक्रम में आई और मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कृषि चर्चा में श्रोताओं, आज आपने मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में जाना। जानकारी दे रही थी डॉक्टर रूपन रघुवंशी और आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा समाप्त हुई और आगे बढ़ते हैं नमस्कार लखनऊ में और चर्चा करते हैं, सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है मित्रता।
3: मित्रता हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। हर व्यक्ति की अभिलाषा रहती है कि उसे जीवन में एक सच्चा साथी या मित्र

मिले जिससे वह अपना सुख दुख साझा कर सके तथा जिसके समक्ष अपने हृदय के भावों एवं उद्गारों को खोल कर रख सके। जिनके पास सच्चे एवं निश्चल मित्र हैं उनका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होता है, उन्हें किसी भी प्रकार का अभाव प्रतीत नहीं होता है, चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, सभी स्थितियों में वे अपने आप को अच्छे से संभाल लेते हैं। सच्चा मित्र प्रतिकूल परिस्थितियों में सच्चे पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। वो अपने मित्र का साथ किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है, अपितु उसकी समस्याओं के समाधान में संलग्न रहता है। वो अपने मित्र का बुरा कभी नहीं सोचता है और न ही उसे कभी हतोत्साहित करता है, वह तो सदैव उसकी उन्नति का पथ प्रशस्त करता है। महाकवि भर्तृहरि ने श्रेष्ठ मित्र के स्वरूप के संबंध में कहा है कि सच्चा मित्र अपने साथी को पाप करने से रोकता है, हितकर कार्यों में लगाता है, गोपनीय बातों को छिपाता है, सद्गुणों का प्रकाशन करता है, विपत्तिग्रस्त होने पर कभी साथ नहीं छोड़ता है तथा समय पड़ने पर उसकी यथाशक्ति सहायता करता है। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम निगदन्ति संतः। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना मित्र को दुख रज मेरु समाना, जिन्हके असिमति सहज न आई ते सठ कत हठ करत मिताई, कुपथ निवारि सुपंथ चलावा गुण प्रगटय अव गुणनि दुरावा, देत लेत मन संक न धरई बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। सज्जनों की मित्रता का आदर्श स्वरूप दूध और जल की मित्रता में देखने को मिलता है। क्षीरेणात्म गतोदकाय ही गुणा दत्ता पुरा स्वे खिला, क्षीरोत्ताप मवेच्छ तेन पयसा स्वात्मा कृषानव हुतः, गंतुम पावक मुन मनस्तद भवद दृष्ट्वा तु मित्रा पदम युक्तम तेन जलेन साम्यति सताम मैत्री पुनस्त्वीदृशी। अर्थात पहले दूध ने अपने में मिले हुए जल के लिए सभी प्रसिद्ध अपने गुण दे दिए, फिर उस जल ने दूध का जलना देखकर अपने को अग्नि में जला दिया, तब दूध मित्र की विपत्ति को देखकर अग्नि में जाने के लिए व्याकुल हो गया और फिर जल को पाकर ही शांत हुआ। वस्तुतः सज्जनों की मित्रता ऐसी ही होती है।

मित्रता, ये था विषय हमारे आज के सुविचार का, स्वर एवं आलेख डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल का। और नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, अब बारी है आज की आराधना की।

ईश्वर की सच्ची भक्ति वो है जिसमें अहंकार नहीं, केवल संपूर्ण समर्पण और ईश्वर पर पूरा पूरा विश्वास होता है।

ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और प्रकृति का शांत वातावरण यही जीवन की असली संपत्ति है। जो इंसान इन तीनों का आदर करता है, उसका जीवन एक सुंदर प्रार्थना बन जाता है।

असफलता ये साबित नहीं करती कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये दर्शाती है कि आपकी कोशिशों में अभी और निखार आना बाकी है। हार कर भी फिर से उठ खड़े होने का हौसला ही आपको एक साधारण इंसान से महान योद्धा बनाता है। और जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाता है, उस इंसान का साथ ईश्वर भी कभी नहीं छोड़ते।

श्रोताओं, इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें, इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए श्रोताओं सुनिए इसका भाग 254।

उधर दशरथ पुत्रों से, चाहे वे भगवान के अवतार भी हों, लोहा लेने का निश्चय करके रावण मारीच के पास पहुंचता है और इधर श्रीराम जनक नंदिनी पर मनुष्य लीला करने का अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। जब तक रावण का विनाश न हो जाए, सीता अग्निदेव की शरण चली जाती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर और रविंद्र साठे और संगीत निर्देशन दिया था सतीश भाटिया ने। आज आप सुन रहे थे इसका भाग 254। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब बारी है संस्कृत समाचारों की। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, आइए अब आपको संस्कृत समाचार सुनवाने के लिए अपने दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: वैश्विक सामग्री निर्माणस्य प्रमुख केन्द्र रूपेण विकसितुं शक्यते। असौ सामाजिक संचार पटले संसूचितवान् यत् नवदिल्ल्यां नेटफ्लिक्स इत्यस्य सह मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा टेड सैरंडोज इत्यनेन सह असौ मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् तयोः मध्ये भारतस्य मनोरञ्जन क्षेत्रस्य विशाल सम्भावना विषये अपि विस्तृतः विचार विमर्शः अभवत्। विश्वस्य प्रमुख सामाजिक माध्यम मञ्चानां मूल संस्थायाः मेटा इत्यस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा मार्क जुकरबर्ग इत्यनेन बाल यौन शोषण सामग्री तदनुषंगिक सामग्री कृत्रिमतया निर्मित सामग्री चेत्येषु अथ मञ्च संचालने च जात दोषान् अधिकृत्य भारत प्रशासनात् क्षमा याचिता। सूत्राणामनुसारं मेटा संस्थया स्वीकृतं यत् केषाञ्चन प्रकाराणां सामग्रीणां प्रचाराय बहुधनराशिः व्ययिता आसीत्। भारत प्रशासनेन मेटा संस्थायै एतत् स्पष्टीकृतं यत् सा मध्यस्थ परिभाषायाः अन्तर्गतं न आयाति, यतः सा संस्था एव निर्धारयति यत् का सामग्री कस्मै प्रेषणीया इति। मेटा संस्थया स्वदोषः स्वीकृतः तथा तस्मिन् विषये दुःखं च व्यक्तम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं अफ्रीका देशैः सह समावेशिनम् आवश्यकताधारितञ्च विकास सहयोगं समर्थयति, यत् स्थानीय सामर्थ्यं सुदृढीकृत्य राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तौ सहायकं भवति। ह्यः नवदिल्ल्याम् अफ्रीका दिवसावसरे अवदत् यत् अफ्रीका देशानां प्रमुख व्यापार निवेश सहभागिषु भारतमपि अन्यतमम् अस्ति इति गौरवस्य विषयो वर्तते। गतवर्षे उभयोरपि मध्ये 93 अर्बुद डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीका देशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुख निवेशक देशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां 16 भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिविजन ए इत्यस्य उपांत्य चरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्य प्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपांत्य चक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, उड़ीसा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूट आउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलं अथ मध्य प्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलं च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब बारी है कि सेहत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त कर ली जाए। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं नीना सोनकर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घरेलू उपाय की जो वर्षों से हमारे भारतीय रसोई घरों और दादी नानी की अलमारी में अपनी जगह बनाए हुए है। बहुत ही साधारण सा दिखने वाला लेकिन अद्भुत गुणों से भरपूर, जिसका नाम है ईसबगोल, जिसे अंग्रेजी में सीलियम हस्क कहा जाता है। हो सकता है आपने इसे कभी पेट खराब होने पर, कब्ज से राहत के लिए या भारी खाना खाने के बाद आराम पाने के लिए लिया हो, लेकिन आज हम इसके केवल एक नहीं कई प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्वास्थ्य लाभों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक घरेलू इलाज नहीं है बल्कि एक संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षक है। बस हम इसे सही तरीके से अपनाना और समझना सीख जाएं। ईसबगोल का स्रोत है प्लांटिगो उवाटा नामक पौधा, जिसके बीजों से ये भूसी प्राप्त की जाती है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, खासकर राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। जब इसके बीजों की बाहरी परत यानी हस्क निकाली जाती है तो वही हमें बाजार में ईसबगोल के रूप में मिलती है। अब बात करेंगे इसके स्वास्थ्य लाभों की। ईसबगोल का सबसे अधिक पहचाना गया गुण है

0: पाचन में सहायता करना। जब हम इसे पानी या दूध के साथ लेते हैं तो ये एक जेल जैसा रूप धारण कर लेता है। ये जेल आंतों की दीवार पर जाकर एक कोमल परत बनाता है जिससे मल को निकलने में आसानी होती है और कब्ज से राहत मिलती है। यही कारण है कि भारत के लाखों लोग इसे रोज रात को भोजन के बाद या सोते समय लेते हैं, एक शांत नींद और अगले दिन की बेहतर शुरुआत के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फाइबर से भरपूर इसबगोल को जब हम नियमित रूप से लेते हैं तो ये न केवल पेट साफ रखता है बल्कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, खासकर LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसे दिल की बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है। उसे ये धीरे धीरे कम करता है और ये सब कुछ बिना किसी दुष्प्रभाव के होता है। शोध बताते हैं कि इसबगोल शरीर में ट्राइग्लिसराइड को भी घटाने में मदद करता है जिससे हृदय रोगों का खतरा और भी कम होता है। हृदय रोग आज की जीवन शैली में बहुत सामान्य हो चुके हैं, ऐसे में अगर एक चम्मच भूसी आपके दिल को सुरक्षित रखने में सहायक हो तो इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश में हैं तो भी इसबगोल आपका साथी बन सकता है। इसका सेवन भूख को नियंत्रित करता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है और इस कारण ओवरईटिंग से बचाव भी होता है। आप चाहें तो इसे भोजन से 20 से 30 मिनट पहले एक गिलास पानी में भिगोकर पी सकते हैं। इससे भोजन की मात्रा स्वतः ही घट जाती है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये एक अनमोल उपहार है। इसबगोल आंतों में ग्लूकोज के अवशोषण की गति को धीमा करता है जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर स्तर अचानक नहीं बढ़ता। यही कारण है कि बहुत से डॉक्टर्स भी इसे टाइप 2 डायबिटीज के प्रबंधन में उपयोगी मानते हैं, खासकर जब इसे संतुलित आहार और दवाइयों के साथ लिया जाए। आजकल बढ़ती हुई एक और परेशानी है, वो है आंतों की जलन और अल्सर। इसबगोल जब जेल बनाकर आंतों में जाता है तो ये एक कोमल परत बना लेता है और आंतों को प्राकृतिक रूप से सुरक्षा देता है, जलन को शांत करता है और आंतों की मरम्मत में सहायता भी करता है। लेकिन जहां इसके इतने लाभ हैं, वहीं कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, इसबगोल को हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम पानी के साथ लेते हैं तो ये आंतों में सूख सकता है और इसका असर उल्टा हो सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी विशेष दवा पर हैं या गर्भवती हैं तो चिकित्सकीय सलाह लेना बेहद जरूरी होता है। अब एक रोचक पहलू ये भी है कि इसबगोल केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी राहत देता है। जब आपका पेट साफ रहता है, नींद अच्छी होती है और शरीर हल्का महसूस करता है तो मन भी स्वतः ही शांत और स्थिर होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद इसे सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि संतुलन के लिए भी उपयुक्त मानता है। कुछ लोग इसबगोल को केवल कब्ज के लिए सीमित मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ये एक बहु उपयोगी बहु लाभकारी प्राकृतिक रेशा है जो हमारी तेज तर्रार और अनियमित जीवन शैली में एक बहुत ही संतुलित उपाय है। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति ने कितनी सरल चीजों में कितनी गहराई छुपाई है, बस जरूरत है समझकर उन्हें अपनाने की। आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा और मैं थी आपकी अपनी दोस्त नीना सोनकर। हम फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही घरेलू सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय के साथ। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के माध्यम से प्रतिदिन हम आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़े ना जाने कितनी ही बेहतरीन जानकारियां लेके आते हैं। और इसी के साथ अब नमस्कार लखनऊ में वक्त हो गया है कि हम आज अपनी विभिन्न सभाओं में जो कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं उनके बारे में संक्षेप में आपको जानकारी दे दें।

आपकी पसंद। खेल जगत, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा इटावा और बुलंदशहर जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा उर्दू कार्यक्रम, जिस जो कि आज आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा। इसमें आज सुनिएगा दुनिया की अजब गजब खबरी और हकारक, प्रेजेंटर मोहम्मद उमेर और पेशकश आसिफ इकबाल की। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ आज का विषय है परमाणु ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग।

आज रात 8 बजे संसद समीक्षा प्रसारित की जाएगी। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश आप सुन सकेंगे। इन दोनों ही कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। रात 8:20 पर सुनिएगा विधान मंडल समीक्षा। रात 9:30 पर श्रोताओं के पत्र और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा

दिन में बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन, दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम के अंतर्गत विजय कुमार पांडे से सुनिएगा सफलता की कहानी, सुगंधित धान उत्पादन, आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग, इसमें मोहित बजाज बताएंगे साइबर अपराध के बारे में, आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। कार्यक्रम नई उड़ान आप सुन सकते हैं शाम 5:45 पर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में अरविंद कुमार दीक्षित की वार्ता सुनिएगा, प्रौद्योगिकी आधारित समावेशी विकास और स्मार्ट गांव। शाम 6:50 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, आज सुनिएगा इसका तीसरा भाग, आज की बात के तहत आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्यारेलाल सरोज और आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर आज सुनिएगा पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन। लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में 9:50 पर और लोकमाधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा आल्हा गायन, कलाकार होंगे राम प्रकाश वसाथी। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आप आज की विविधा।

विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। आज की विविधा परमाणु ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग। जब भी हम परमाणु शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले विनाश की तस्वीर उभरती है। हिरोशिमा, नागासाकी, तबाही और हजारों मासूम जिंदगियां। लेकिन क्या परमाणु ऊर्जा की पहचान केवल विनाश है? जरा एक पल रुक कर सोचिए, जिस शक्ति ने कभी शहरों को राख बना दिया, वही शक्ति आज लाखों घरों में रोशनी पहुंचा रही है। वही शक्ति अस्पतालों में कैंसर के मरीजों का इलाज कर रही है। वही शक्ति खेतों में बेहतर फसल उगाने में वैज्ञानिकों की मदद कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शक्ति वही है, लेकिन उसका उपयोग कैसा किया जाता है। परमाणु ऊर्जा से बनी बिजली संयंत्र बहुत कम ईंधन में अत्यधिक मात्रा में बिजली पैदा कर सकते हैं। इससे कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों पर

निर्भरता घटती है और वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है। जब दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, तब परमाणु ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आती है। लेकिन इसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।

सोचिए, एक माँ अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज कराने पहुंचती है। डॉक्टर बताते हैं कि आधुनिक परमाणु चिकित्सा तकनीक से बीमारी का सही पता लगाया जा सकता है और कई प्रकार के कैंसर का उपचार संभव है। उस माँ के लिए परमाणु ऊर्जा कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं, बल्कि अपने बच्चे की मुस्कान वापस पाने की एक उम्मीद है। कृषि के क्षेत्र में भी इसका योगदान कम नहीं। वैज्ञानिक विकिरण तकनीक की सहायता से ऐसी फसलें विकसित करते हैं जो अधिक उपज देती है, कुछ रोगों का बेहतर सामना करती है और लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। इसका लाभ किसानों से लेकर आम उपभोक्ता तक पहुंचता है। आज अंतरिक्ष अनुसंधान में भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जिन अंतरिक्ष यानों को वर्षों तक दूर अंतरिक्ष में काम करना होता है, उन्हें ऊर्जा देने के लिए विशेष परमाणु ऊर्जा स्रोतों का सहारा लिया जाता है। यानी ये शक्ति केवल धरती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी मानव ज्ञान की सीमाएं आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। हर शक्ति, याद रखिए श्रोताओं, हर शक्ति अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। यदि परमाणु ऊर्जा का उपयोग लापरवाही, लालच या युद्ध के लिए किया जाए तो उसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। इसलिए सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुशासन, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन अनिवार्य है। याद रखिए, समस्या ऊर्जा में नहीं होती, समस्या उसके गलत उपयोग में होती है। चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी को चोट भी पहुंचाई जा सकती है। दोष चाकू का नहीं, उसे इस्तेमाल करने वालों का होता है। ठीक उसी प्रकार परमाणु ऊर्जा भी मानवता के लिए वरदान बन सकती है या अभिशाप। निर्णय हमारे हाथों में है। आइए हम ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां विज्ञान का उपयोग भय फैलाने के लिए नहीं बल्कि जीवन बचाने, पर्यावरण की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए हो। क्योंकि सच्ची प्रगति वही है जिसमें शक्ति के साथ संवेदनशीलता भी हो, विज्ञान के साथ मानवता भी हो और विकास के साथ जिम्मेदारी भी। तो दोस्तों, इसी सकारात्मक विचार के साथ अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को आज की विविधा से दीजिए अनुमति। आपसे पुनः विविधा के एक और अंक में एक नवीन विषय के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। और नमस्कार लखनऊ में अब बारी आ गई है प्रादेशिक समाचारों की, तो गोरखपुर से प्रादेशिक सुनवाने के लिए आइए। अब आपको अपने गोरखपुर केंद्र लिए चलते हैं।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में NHAI ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को ही पारित कर दिया था।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल

0: मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 भी कल पारित हो गया।
2: इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा में कल विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। कल ही सदन में संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया।
3: मानसून सत्र में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है।
1: उधर विधान परिषद में कल उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 सहित कुल 12 विधेयक पारित किए गए। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है।
4: करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विकास क्षेत्र में 6 जिले शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन और बुंदेलखंड को प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। कौसाम्बी को बौद्ध पर्यटन केंद्र, फतेहपुर को कृषि व्यापारिक केंद्र तथा बांदा को बुंदेलखंड का आर्थिक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं हमीरपुर और महोबा को खनिज एवं औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में NHAI के क्षेत्राधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि परियोजना के निर्माण और निगरानी में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है।
5: हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेसनाय का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ थे DGM हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डीवार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे और रेसिडेंट इंजीनियर उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, 2 साल तक के लिए उनको भी डीवार किया गया।
1: NHAI के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सुधार कार्य पूरा होने तक यात्रियों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मेडिकल परामर्श समिति ने नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण कल से शुरू कर दिया। पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। शुल्क भुगतान 12 अगस्त को शाम 6 बजे तक किया जा सकता है।
6: अभ्यर्थी 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों

0: को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
2: राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय के भवनों को एकरूपता के साथ डिजाइन किया जाए, साथ ही प्रत्येक संस्थान में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। यह समिति समय समय पर उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: राज्यपाल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल शाम नई दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। बसपा विधायक के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
5: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। और दोस्तों, नमस्कार लखनऊ में अब वक्त हो गया है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। तो आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनिए ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित सी आर व्यास। आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग पर

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ, साथ ही समाप्त हुआ नमस्कार लखनऊ। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात सुनवाने के लिए, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
5: हम एक साथ मिलकर

0: ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे, और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
1: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत

0: ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली।

0: है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से, जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर आरबीआई गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, जेईई तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में न आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम नमस्ते बरेली में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, 1 से 7 अगस्त तक हम स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं। कहते हैं कि छोटे बच्चे के लिए माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो है वो अमृत के समान होता है। उसमें सभी वो पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग करते हैं और साथ ही जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। आज हमने इसी विषय पर बातचीत की है एनम बहन से, तो आइए सुनवाते हैं बातचीत के वो अंश।
3: जी, प्रोग्राम नमस्ते बरेली में आपका स्वागत है निशा जी।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम निशा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो सप्ताह चल रहा है, मतलब स्तनपान सप्ताह, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सभी ये जानते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे बहुत सारे पोषक तत्वों को मतलब जरूरत होती है। नया वातावरण होता है, नया माहौल होता है, अंदर शरीर में रहता है तो पूरा बंद रहता है पॉलिथीन में पैक, जब बाहर आता है तो बाहरी वातावरण वो थोड़ा अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जब बच्चा बाहर आता है बॉडी से, तो जब हम बाहर आते हैं जब गर्भ में होता है तो वो गर्भ नाल से अपना पोषण लेता है माँ के द्वारा। जब वो शरीर बाहर आता है तो गर्भनाल तो हट जाती है। बच्चा जब है तो उसके लिए क्या है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, एनर्जी के लिए, जिससे उसका विकास हो। उस टाइम पर उस बच्चे को जो भी माताएं हैं वो केवल और केवल अपने बच्चे को अपना ही स्तनपान कराएं। और सबसे बड़ी बात, डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर ही अंदर जो भी माताएं हैं जिनकी डिलीवरी हुई है, जिनको बच्चे हुए हैं, वो अपना पहला गाढ़ा दूध बच्चों के लिए जरूर पिलाएं।
3: पहला पीला गाढ़ा दूध।
4: जी जी
3: जी।
4: उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है
3: जी,
4: क्योंकि वो डिलीवरी के बाद पहला आता है। वो बच्चे के ब्रेन के लिए, उसकी आंखों के लिए, उसकी मतलब ये बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं जो पाचन क्रिया है

0: उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मतलब वो जितना भी गंदा होता है हमारे बॉडी से, वो जब वो दूध पीता उसके द्वारा वो बाहर जाता था।
1: जी
0: उसके साथ ही जब बच्चा 6 महीने तक हो, तो
1: जी
0: माता को ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्थिति में
1: जी
0: कोई भी दवाई या सीरप या पानी नहीं देना चाहिए।
1: जी
0: आप डॉक्टर उपचार कर लो, मतलब घरेलू कोई भी मेडिसिन नहीं देना चाहिए
1: जी
0: जी। इससे देने से क्या होता है ना, बच्चे को जो चीज मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिलती। और उसके साथ ही साथ ये होता है कि जब हम माताएं अपना दूध पिलाती हैं बच्चों के लिए,
1: जी
0: तो माँ और बच्चे में एक मतलब बॉन्डेशन हो जाती है। जैसे माँ कुछ नहीं कहती है,
1: जी
0: बच्चा भी कुछ नहीं कहता, लेकिन माँ अपने आप ही समझ जाती है उसे कब पिलाना है, किस टाइम पिलाना है, कितना पिलाना है।
1: जी
0: और बच्चा भी उसे पीकर संतुष्ट हो जाता है, उसका पेट भर जाता है, उसे उसके अलावा कोई भी चीज नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे
0: जी
1: श्रोताओं को बता रही हैं मैडम। और हम ये देखते हैं कि अक्सर जो माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं या उनको दूध नहीं आता, तो देखते हैं कि उनके बहुत सारी विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि स्तन कैंसर से भी वो पीड़ित हो सकती हैं, ऐसा है ना?
0: हाँ जी, स्तन कैंसर जो है वो क्या होता है, जब माँ दूध ही नहीं पिलाएगी,
1: जी
0: और मतलब जो दूध पिलाएगी नहीं, तो जो मतलब दूध है वो वहीं का वहीं सूख जाता है। वो फिर धीरे धीरे सूखने बाद एक गांठ का या पत्थर का स्वरूप लेते लेते हो जाता है,
1: जी
0: जिससे मतलब बहुत ज्यादा ही लास्ट टाइम पर ऐसा होता है कि आपको वो पार्ट अलग ही करना पड़ता है अपने शरीर से।
1: जी
0: इसीलिए कहा जाता है कि जो हम पीला गाढ़ा दूध पिलाते हैं, उस ऑक्सीटिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो ज्यादा मतलब बच्चे के लिए फायदेमंद है और माँ के लिए भी,
1: जी
0: दोनों के ही लिए वो फायदेमंद होता है। तो इसलिए वही पिलाएं। उसके साथ साथ ही जैसे बच्चों को माँ जब दूध पिलाती है, तो बच्चों को बहुत ही कम रियल केस होगा, उसको निमोनिया नहीं होगा,
1: जी
0: दस्त नहीं होगा कभी, मोटापा भी नहीं बढ़ेगा उसका, और उसे पानी की या मधुमेह जिसको बोलते हैं उस तरह की कभी भी कोई बीमारी उसको नहीं हो। और जब वो माँ का दूध पीता है, उसका मांस जो दिमाग है बच्चे का वो अच्छा विकास करेगा। और माँ के दूध में ही उसे
1: जी
0: प्रोटीन है, वसा है आपका, विटामिन है, बाकी अन्य जितने भी खनिज है वो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे।
1: जी जी
0: कभी भी ऐसा हो, जैसे कुछ माताएं होती है ऑफिस वर्क वाली हो या जॉब करती है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में,
1: जी
0: तो होता है कि वो बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकती है,
1: जी
0: वो घर पर ही छोड़ जाते हैं मतलब किसी के पास भी। तो वो माताएं ये ना सोचे कि मैं चली गई हूँ तो ये बाहर से कुछ लेकर डब्बे वाला पिला दें या मतलब भैंस का पिला दें, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
1: जी
0: तो आप मशीनें आने लगी हैं कि हम अपने शरीर से मतलब मशीन के द्वारा दूध को निकालकर स्टोर कर ले कांच वाली बोतल में, और उसे आप फ्रीज में कम से कम 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: उससे कम, उससे ऊपर आप 6-7 जैसा भी हो, जब तक आपको उसमें लगे कि हाँ स्मेल नहीं आ रही है खट्टापन वाली, तब तक आप उसे यूज कर सकती हैं। बच्चे को जब भी भूख लगे घर पे जो भी है वो दूध को बॉटल में या चम्मच से बच्चे को दे सकता है। इसके साथ ही कभी आपको लगे कि हाँ आप बहुत ही ज्यादा लेट हो गई हो, तो आप इस परेशानी में इस कंडीशन में आप गाय का दूध ही पिलाएं, किसी और चीज को महत्व ही नहीं दे। क्योंकि
1: जी
0: होता है बहुत से, क्योंकि अभी का जो समय है सारे मतलब जो मतलब मदर फादर है वो वर्किंग वाले हैं, तो मोस्टली मतलब परेशानी आती है कि माँ बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाती है। तो इसका बस एक ही, आप स्टोर करेंगे बच्चे को सारा पोषक तत्व मिलेगा, बच्चे का ब्रेन भी अच्छे से डेवलप होगा, माँ और बच्चे का जो आपसी लगाव है वो भी कंटिन्यू रहेगा, सारी बीमारियों से वो दूर रहेगा, और आगे भी भविष्य में उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो हम सोचते हैं कि हाँ हो, जो अभी बहुत जैसे गला घोटू की बीमारी है
1: जी
0: मतलब, और मानसिक बुखार की बीमारी है, जो मानसिक बुखार हो जाता है, पीलिया हो जाता है बच्चों के लिए, और मतलब जिसे बोलते हैं दस्त बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी में कमी, ये सारे उसी के ही रीजन है कि माँ दूध नहीं पिला पाती या कुछ माता नहीं पिलाना चाहती, तो उसके वजह से बच्चों में बहुत सारी कमियां रह जाती। तो मेरा ये अनुरोध है जो माताएं ऑफिस वर्क वाली हों या मतलब बिना वर्क वाली हाउस वाइफ है, वो अपना ही दूध बच्चे को कोशिश करें पिलाएं, और जितना हो सके, ऐसा नहीं आप 6 महीने तक तो पिलाना ही पिलाना, उससे कंटिन्यू ऊपर आप मिनिमम 1 साल तक पिला सकती हैं।
1: जी जी
0: जी
1: मैडम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि बच्चे को माँ का दूध ही 6 महीने तक पिलाएं, क्योंकि उसमें वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो उसका बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास करते हैं। और
0: जी
1: हम
0: जी
1: चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी इससे लाभान्वित होंगे। निशा मैम, आपका महत्वपूर्ण समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी थैंक यू सर।

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। श्रोताओं सावन का पवित्र माह चल रहा है और साथ ही आज 6 अगस्त से 108वें उर्से रस्वी का भी आगाज हो गया है। तो प्रशासन ने उर्से रस्वी को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित संयुक्त ब्रीफिंग में जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने सभी अधिकारियों को संदेश दिया है कि उर्स के दौरान सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार मौजूद रहकर हर व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम अविनाश सिंह ने बैठक में

विधायक की 6, 7 और 8 अगस्त को आयोजित होने वाले उर्से रजवी की निगरानी के लिए पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 8 जोन और 29 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर भीड़ नियंत्रण तक हर व्यवस्था की निगरानी करेंगे। और प्रशासन का ये लक्ष्य है कि लाखों जायरीन बिना किसी परेशानी के उर्स में शामिल होकर सुरक्षित अपने घर वापस लौट सकें।

जी दोस्तों, 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे प्रोग्राम नमस्ते बरेली। श्रोताओं, बरेली शहर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की समस्या, जिससे आम जन हमेशा ही परेशान रहता है और प्रमुख चौराहों पर अक्सर हम भीड़ को देखते हैं। तो इसके लिए यातायात पुलिस ने बरेली शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए शहर को विभिन्न जोन और सेक्टरों में बांटा है। भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए बड़ा बाईपास और प्रमुख चौराहों पर डायवर्जन व नो एंट्री के नियम लागू किए गए हैं। हालांकि व्यस्त चौराहों पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही अगर हम बात करें यातायात प्रबंधन और प्रशासनिक बदलाव की, तो इसके

लिए भी यातायात पुलिस के द्वारा काफी बदलाव किए गए हैं। शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष जोन और सेक्टर प्रणाली लागू की गई है। आयोजनों या त्योहारों के समय जाम से बचने के लिए झुमका तिराहा और बड़ा बाईपास से भारी वाहनों का मार्ग बदला गया है। ऑपरेशन और शिकायतों के लिए नागरिक बरेली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक व्यवस्था का सहयोग ले सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें साधन की, तो प्रमुख साधन जो हैं वो ई रिक्शा, ऑटो और शहर की प्रमुख मुख्य बसें हैं। और समस्याएं अगर की बात करें तो संकरे रास्ते और बेतरतीब पार्किंग के कारण मुख्य बाजार व रेलवे स्टेशन रोड पर अक्सर जाम लगा रहता है। तो इसके लिए हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, यातायात पुलिस का सहयोग करें और जाम के झंझट से निजात पा सकते हैं।

0: कोई कहता है हाय, कोई कहता है बाय, कोई कहता है
1: हाय,
0: कोई कहता है
2: मीना है।
0: रंग ढंग सब जीवन का हमको यहाँ दिख जाए क्या, क्या?

0: Anju, Anju, please try to understand यार.
1: Means मेरा कोई कीमत नहीं है क्या? एक घंटे से खड़ी हूँ.
0: घंटा?
1: हाँ.
2: मिलने जुलने का वादा सब सिग्नल पे करते हैं, अपनी लापरवाही से कुछ लोग यहाँ मरते हैं.

0: बाबा भगवान तेरी शादी करा देगा।
1: अरे बाबू
2: क्या क्या लफड़ा होता है सिग्नल पे, सिग्नल पे कोई हंसता है कोई रोता है सिग्नल पे, सिग्नल पे।
0: हाय सलमान चल पैसे दे। क्या रे टाई सूट लगा के एक रुपए का कॉइन दिखाता है, पाँच रुपए दे जट में चल लुखा।
3: कोई कहता है हाय हाय, कोई कहता है बाय, कोई कहता है
0: टाइम सुन रही,
3: कोई कहता है।

श्रोताओं, जिले में 14 वर्ष तक की 25,053 किशोरियों का सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण किया जा चुका है और 25 दिनों में 30,283 का टीकाकरण करना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती से कम नहीं हो गया। अब तक जो टीकाकरण हुआ है वो 4 महीने में हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने सभी जिलों में 31 अगस्त तक HPV वैक्सीनेशन 100% कराने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही अब वन विभाग नहीं, नगर निगम ही पकड़ेगा बंदर। शहरी क्षेत्र में आमजन के लिए चिंता का सबब बने उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग और नगर निगम के बीच चल रही उहापोह की स्थिति बुधवार को साफ हो गई। शासन ने शहरी क्षेत्र में बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की जिम्मेदारी फिर से नगर निगम को दे दी है। शासन आदेश मिलते ही नगर निगम आयुक्त ने नगर निगम के पशु कल्याण विभाग को तत्काल निविदा आमंत्रित कर एजेंसी चयन करने के निर्देश दिए। और साथियों, 10 एवं 16 वर्ष आयु वर्ग के छूटे हुए बच्चों का TD टेटनेस डिप्थीरिया टीकाकरण विद्यालयों में कराया जाएगा। CM ग्रिड की प्रगति पर 10 को मंथन करेगा शासन। शहर में निर्माणाधीन CM ग्रिड परियोजना को लेकर शासन ने बरेली समेत सभी निकायों के मुख्य अभियंता और कार्यदायी संस्थाओं को तलब किया है। बहड़ी की कताई मिल में टेक्सटाइल पार्क स्थापना का रास्ता साफ, मिलेगा रोजगार। बहड़ी में पिछले 2 दशक से बंद पड़ी कताई मिल में दोबारा रोजगार के धागे बुने जाएंगे। 80 एकड़ भूमि पर बनी इस कताई मिल में टेक्सटाइल पार्क का स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल ने ये जमीन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी। और साथियों, झमाझम वर्षा से सुहावना मौसम, तापमान में गिरावट से राहत। जिले में इन दिनों मानसून पूरी तरह सक्रिय है जिसके चलते मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। बादलों की आवाजाही और रुक रुक कर हो रही वर्षा ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है। बुधवार को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दिन भर बादलों का डेरा रहा और झमाझम वर्षा हुई। वर्षा के बाद चली तेज ठंडी हवाओं से शाम के समय मौसम में ठंडक घुल गई जिससे लोगों को गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। सुबह के समय मौसम में आई गिरावट के चलते लोगों को अपने घरों में AC और कूलर तक बंद करने पड़े। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी मौसम के समान और अनुकूल बने रहने की संभावना जताई है।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम नमस्ते बरेली। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग।
1: टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस, केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर, अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस बाय डॉक्टर आभा चौधरी, फाउंडर सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन अनुग्रह RRTC। This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Senior citizens care का, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहरों में हो, उसके प्रति जागरूकता करनी हो, या policy makers, NGOs, civil society या wider society को इसमें integrate करना हो, एक broad picture कि भारत धीरे से ही सही, पर aging tsunami की ओर हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, बेहतर medical सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है। यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए एक ये बोन बनकर आ सकता है। हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं। 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं। 58% से ज़्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं, कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा

डॉन्टिंग होते हैं, वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियाँ भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था, जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएँ, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाज़ों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज़ को बाहर अगला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है, जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज़्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के, तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं, और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज़ के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज़ के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज़ के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज़ है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज़ है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीज़ें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज़ माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज़ के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनकी देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति, उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब

लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पे अपनी वसीयत बनाएं और अपने नाम पे सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने

0: अपने नाम पे सेविंग्स रखें और चीजों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज वेलफेयर Awareness and Strengthening Access to Justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे, जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना, जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियां उन्हें देना। और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाते हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और उसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जेनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके।

0: इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स वुमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में। एक और वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलकर भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है, जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age-friendly India and age-friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 102.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। गुलाम फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में। समीर का लिखा गीत है।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा आज के मेहमान लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल और शबाब सबरी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल के बोल, MM करीम का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

शिल्पा राव और सचेत टंडन की आवाजों में अगला गीत। प्रिया सरैया ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत। चित्रा और केके की आवाजें हैं, गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार अनुमल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: अगला गीत बेफिक्रे, फिल्म से सुना रहे हैं आपको अरिजीत सिंह की आवाज में। जयदीप साहनी का लिखा गीत है, तर्ज बनाई है विशाल एंड शेखर ने।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत दे दे प्यार दे इस फिल्म से अरमान मलिक की आवाज है। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, अमाल मलिक ने संगीत से सजाया है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ लेती हूँ विदा। मैं पूजा नरानिया, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

0: बेटा है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये। और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी सत्या।

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई चप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकारा फिल्म का ये गाना।

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभा है। एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म निशब्द की गाने विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।

0: विशाल भारद्वाज अपने खास तरह के सिनेमा के लिए और अपने खास तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं। साल 2011 में वो लेकर आए फिल्म सात खून माँ।
1: आप

साल 2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंटोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म

आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल 2014 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कृति हेमलेट पर बनाई अपनी फिल्म हैदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत गाया था।

विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी। विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस की एक महत्वपूर्ण फिल्म पिछले दिनों आई और वो फिल्म थी रंगून।

0: लेखक और संगीतकार विशाल भारद्वाज पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। साथियों, ढेर सारे कमेंट्स आपके आ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं इस पहले कमेंट के साथ। आपने सुना चाहा है आशा फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत है, आनंद बख्शी का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनने वाले हमारे ये श्रोता हैं कस्बा वाराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, वसीम अंसारी और पप्पू भाई अंसारी। कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमपुरी, उमेंद्रपुरी गोस्वामी, कल्लू भाई मिस्त्री। अब है आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल। साथ में है धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। जिला मुरादाबाद के रामदुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, मोहनी, सोनी, मोहनी और साथ में ऋतिक और बलबीर सिंह। अब हैं जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णब दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल। उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल बख्तारिया, धाकड़ भोला बागतारिया, प्रवीणरियांश और प्रतीक बागतारिया। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान और इनके सभी मित्रगण। अब हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और इनके परिवार के सभी लोग। चंदोसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बुधनगर खंडवा से नदीम भाई, बैजोई से राजू भाई और इनके परिवार के सभी लोग। गांव गढ़ी कुटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम अकरम, शानिया इलियास, मुशाहिद अक्सा, आयशा उमर और समीना अंसारी। बारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जीशान बारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान। आप हैं ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान और इनके सभी मित्रगण। आप हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह,

एवं इनकी प्यारी प्यारी कुकुरानी। ये कमेंट हमारे पास आया है, भेजने वाले हमारे श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णब आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। ये कमेंट हमारे पास आया है अद्भुत कुमार दीक्षित मणिनाथ बरेली सिटी से। आप है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियंका साहू, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। आप हैं हमारे श्रोता राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना, मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सराजुद्दीन, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव तांदले, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते। आप हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन। ढेर सारे श्रोताओं के हमारे पास कमेंट आए हुए हैं। और आप हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। आप हैं हमारे श्रोता जोहर का ये कमेंट हमारे पास आया है, कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश और कुमार सौरभ महतो। पद्मडक इस नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, निधि शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। ग्राम नवा गांव मोहड़ी पार जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से सोहन लाल साहू, रुकमणी साहू, तेजेश्वरी साहू, कुशाल और इनके परिवार के सभी लोग। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर, वीणा बंडलकर, विविधा बंडलकर। ग्राम कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत और इनका समस्त परिवार। आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोड जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से। आप है रामपुर लिसनर क्लब से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और अहमद। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार के सभी लोग। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलरामगेट कासगंज से एमएसलम सैफी, जेबुन्निशा बेगम सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी, आबाद खान और इनके सभी परिवारीजन। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही और इनके परिवारीजन। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आप हैं हमारे श्रोता, ये कमेंट हमारे पास आया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डींगे, नमन डींगे, अपार डींगे का। बुंदेलखंड महोबा उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, दर्श राजपूत और राजपूत परिवार के सभी लोग। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और परिवार के सभी लोग। आप हैं हमारे श्रोता कृष्णा पाक दिल्ली से सुभेंद्र सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और इनके परिवार के लोग। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सुहाने, हाजी अफजल मलिक, संदीप, रामगढ़ कैंट से झारखंड से निपी सुहाने और इनके सभी साथी। बहड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और इनके परिवारीजन। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। आप हैं पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव और परिवार के लोग। कस्बा सिथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासिफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी। तो आइए सुनते हैं फिल्म आशा का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

ज्योति नगर नोखा राजस्थान से आप हैं पुखराज पर गुजर कैलाश मिस्त्री गोर्धन धरा फरसा राम सोलंकी श्यामलाल चौहान घनश्याम भार्गव बाबू गौरी हसन सिंह का आपने सुना चाहे फिल्म कामचोर का ये गीत और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार रामदेवरा से दिनेश चौहान डांगरी से बाबू राम जयपाल और इनके सभी मित्रगण। आप हैं हमारे श्रोता ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाहनवाज सरफराज फरतीन सुहान अरजान आवान और अब्बासी परिवार के सभी लोग। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से आप हैं बालकृष्ण शर्मा प्रवीण शर्मा राहुल शर्मा मनीष शर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा मंजू वर्मा निशांत वर्मा कौशिकी वर्मा दीपाली वर्मा युवान और आर के राजा। आप हैं हमारे श्रोता ये कमेंट हमारे पास आया है गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी थांदी प्रियंका थांदी प्रशांत थांदी प्रीतम थांदी बेबी बामिका वाड़ी थांदी। आप हैं गांव हीरावाली फजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा और इनके परिवार के सभी लोग। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं रिजवान।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। सदियों आपका पत्र मिला लकी थ्री और मन भावन के कमेंट्स हमारे आकाशवाणी बरेली के व्हाट्सएप नंबर 9457398 और 59 पर भेज सकते हैं। लेकिन श्रोताओं आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके आप प्रोग्राम से संबंधी ही कमेंट करें, अन्यथा फरमाइशी कमेंट बिल्कुल भी इस नंबर पर न करें। अगला गीत फिल्म का नाम है संबंध, आवाज है महेंद्र कपूर की, गीत है प्रदीप का और संगीत OP नैयर का, और पसंद किया है आप सभी ने ग्राम लोहड्डा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिडिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी, करावल दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और इनके परिवार के सभी लोग, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, प्रियंका, रश्मि, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, भाई अजहरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और इनके परिवार के लोग, गांधीनगर गुजरात से जी के परमार और इनके परिवारीजन, आप हैं परिमय

नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, बीड शहर महाराष्ट्र से ये कमेंट हमारे पास आया है। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा और साथ में ऋषि वर्मा, ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर, गांव बटुनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से रियांश मेहर, सृष्टि मेहर और पूरा मेहर परिवार ये कमेंट हमें भेजा है। पटेली रोड गंडुनवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, बेबी अरिबा और हबीबा आप हैं। झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल और तिलक। एयरपोर्ट रोड बंद्रा नगर इंदौर से नारायण भाऊ खडसे, गणेश कार्तिक खडसे, ललित लक्ष्मी नारायण भाऊ खडसे, संजना परी खडसे, देविका चौधरी, स्वाति प्रयागराज चौधरी और इनके परिवारजन। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रताप और इनके परिवारजन। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई, प्रतेश संगई और पूरा संगई परिवार ये कमेंट हमारे पास आया है। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, सरोच्चो कमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, नथु भाई, बेटी हिफ्जा नूरी, नन्हे भाई प्यारी हिना, सूरज मौर्य, शाकिर भाई और इनके सभी मित्रगण, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए के संजीव डावे राव और सभी परिवारजन, मोहम्मद आसिफ अंसारी तेलंगाना से और आप हैं हमारे श्रोता, राजनगर मधुबनी बिहार से नबीज सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत सिंह, चुलबुल रानी, ग्राम सेवड़ी जिला छतरपुर से बारीलाल प्रजापति, धनीराम नरेश, कल्लू रविंदर एवं वृंदावन प्रजापति, छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, खेमकरण और लक्ष्मी देवी, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी आप हैं हमारे श्रोता, ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभय मीत, भगवान दे, स्वाति सिंह, तान्या गौतम एवं सभी मित्रगण। तो आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म संबंध का ये गीत।

अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराज से आप हैं मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन, अर्पिता और इनके परिवार के सभी लोग। आपने सुनना चाहे फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबिया खानम, फरीदा जब्बार, मोहम्मद अशरफ खान, रईसा, मंजू निम्मी और इनके परिवारीजन। मुजफ्फरपुर बिहार से आप हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी। आप हैं हमारे श्रोता। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीजापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शाविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। कांठा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर बिठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि सुरेशे, मायरा सुरेशे। आप हैं हमारे श्रोता। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार और इनके परिवारजन। मजनू का टीला से आप हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और ग्राम देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से आप हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया और बंटी। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और इनके सभी मित्रगण। आप हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, विशाल और परिवारजन। सलीम मंसूरी ग्राम एंचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से साथ में है शकील मंसूरी, इसरार मंसूरी, तौफीक मंसूरी, लईक मंसूरी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से आपने ये कमेंट किया है। बुलठाना महाराष्ट्र से आप हैं राजमाता नगर बुलठाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा नरवाडे, आकाश कुमार। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफीफा, जावेद अंसारी, सूरज और साथ में जस्मीन, शकीला, हिना, राजिया, सुल्ताना और अंसारी परिवार के लोग और इनके मित्रगण। आप हैं पोस्ट गोठा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, सविता देवी, सत्यम मिश्रा, शीतल मिश्रा, राधा मिश्रा, सलोनी मिश्रा, शिवम मिश्रा और डॉक्टर भिखारी सिंह गौर। ये कमेंट हमारे पास से आया है गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी और ग्राम बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं बालकरण वर्मा, अंजलि, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, निधि, निखिल वर्मा। ये कमेंट हमें भेजा है सुशीला देवी मंदुरकर ने डाबकी रोड अकोला से साथ में है सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके परिवारीजन। तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किश्वानूर तेलंगाना। निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख। अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से राम राव नेतोने, शारदा नेतोने, सानिका रिया।

और इनके परिवारीजन। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके परिवारीजन। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। आप हैं मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह और रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीन बानो, एलिजा नयाब और लड्डू मौर्य। इलेक्ट्रॉनिक कर्मचारी नगर रोड बरेली से आप हैं गौतम ऋषि मौर्य, मनोहर लाल मौर्य, मिही लाल मौर्य, प्रीति मौर्य, रीना मौर्य, सुनीता मौर्य। आप हैं हमारे आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा। और नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुशनसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कठारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी और श्रीराम गोंदली, उषा गोंदली, शेवगांव से, कोपरगांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे। आप हैं नजमुल हुदा एस एम जावेद गुमला झारखंड से। ये कमेंट हमारे पास आया हिसार हरियाणा से धर्मेश मौर्य का। आप हैं हमारे श्रोता राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर, कांति गुप्ता, रुद्रा भाई, रिद्धि सिद्धि, कोमल गुप्ता और परिवारीजन। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गार्बी और हिमाश। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से आप हैं गयानन एले, नवदीप, विश्वदीप एले, अशोक एले। आप हैं बड़ी गेवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द, सरिता मालवीय और इनके परिवारीजन। ये कमेंट हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। आप हैं बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। सिटी सेंटर खंडवा से मनोज भाई सेन, पूनम सेन, दीपक सेन, सौम्य सेन, भव्य सेन, डॉली सेन, कार्तिक सेन, विनायक सेन और सेन परिवार के सभी लोग। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, बालकेश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया और सुमित चौरसिया, नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया। आप हैं वैश्लव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा। आप हैं हमारे श्रोता कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मजरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम। आप हैं सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन और चंदन परिवार के सभी लोग। ये हैं हमारे श्रोता गौरव अनिल, कविता अरोड़ा, मिनिस्ट्री रोड उत्तम नगर न्यू दिल्ली से। आप हैं समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहताश बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह। सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। गांव बड़वाला हनवंता फजलिका पंजाब से विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यासिका माविदा और सारा मायल परिवार। महाराणा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज नवाद हसन, सोहेल हसन अनम, यशव अब्बासी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान। आप हैं हमारे श्रोता राशिद हुसैन अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारोबी और प्रणब सावले। तो आइए सुनते हैं मेरा गांव मेरा देश का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार, आपने सुना चाहे फिल्म प्रेम रोग का ये गीत सुरेश बाड़ेकर की आवाज में गीत है, संतोष आनंद का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, शारिक अली खान। आप हैं हमारी श्रोता ग्राम गोपी खिरिया, तहसील भांडेर, जिला दातिया, मध्य प्रदेश से राहुल पाल, हरिमोहन पाल, अंजना पाल, ज्योति बघेल, लक्ष्य बघेल। आप हैं हमारे श्रोता सरलाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका कुमारी शर्मा और इनके साथी। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेल्टी से नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता और लाम से परिवार के सभी लोग। भोजपुर तगा, सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। आप हैं फजलिका पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा, ट्वांसी खेड़ा और

साथ में जीवन सिंह। ये कमेंट हमारे पास आया महाराष्ट्र से, बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा का। आप हैं हमारे श्रोता। श्रीगंगानगर से नेकीराम बंसीवाल और इनके सभी साथी। आप हैं नारवानी चकरभाटा कैंप से चांदनी खुशी, डी आर नारवानी और रवि नारवानी। कटर चंद खां पुराने शहर बरेली, मौर्य मंदिर से रतनमाला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, कौरव मौर्य, चंद्र प्रकाश मौर्य, मनु भाई और इनके सभी परिवारीजन। प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, गड़िया मौजे अस्तु से। आप हैं डायमंड रेडियो श्रोता संघ, महबूबपुरा सनाबत मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री, बेगम समीना खत्री, मोहम्मद जैद खत्री, बेटी मुनीरा, मोहम्मद इकबाल खत्री। आप हैं शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। ये कमेंट हमारे पास आया गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा और इनके परिवारीजनों का। आप हैं हमारे श्रोता राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सोलकर, पिंकी सोलकर, आर्यन कृष्णा और पीहू सोलकर। ये हैं कस्बा उगैती बदायूं उत्तर प्रदेश से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता। आप हैं हमारे श्रोता रणधीर गुप्ता ओखला संगम बिहार दिल्ली से, साथ में बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता, शिवम गुप्ता। ये कमेंट हमें भेजा है बिरमगांव गुजरात से अजीत भावसा, प्रमिला भावसा, भावेश सन्नी और परिवार के लोग। कबर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीडना मस्कीन। साथ में हैं आशीष राजा, चेतन मस्कीन, मेगा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, मास्टर अकील अहमद शेरकोट बिजनौर से। आप हैं प्रदीप सालूजा, संगीता सालूजा, प्रथम सालूजा, जनकपुरी न्यू दिल्ली से। ये कमेंट हमारे पास आया है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश, राशिर में तयू उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक कुमार राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और इनके परिवारीजन। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का और परिवारीजन। विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकोबाई कुशवाहा, निशा कुशवाहा, तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से। तो आइए सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गीत सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके परिवार के सभी लोगों का आपने सुना चाहा है। फिल्म अपनापन का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसी गीत को सुनने के लिए कमेंट हमारे पास आया, कटर चंद खा मौर्य, मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली, सनो के लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और साथ में स्वाति मौर्य। और ये कमेंट आया है बुलंदशहर से उमेश गौड़, रानी गौड़ और इनके परिवारजनों का। करेली बरेली से सीएल वर्मा, ममता वर्मा, ऋषभ वर्मा, मानवी, राज वर्मा, राजेश और अनिल वर्मा आप हैं। इटा रोड गंजुंडवारा से मुशीर अहमद कुरैशी, हसीन अहमद कुरैशी और इनके परिवार के सभी लोग। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीन बानो, अलीजा नयाब और इनके परिवारजन। और ये कमेंट हमें भेजा है फुले नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी और इनके सभी साथियों का। और तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। फिल्म का नाम है अपनापन, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

बड़े खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, चनौरा जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा और

श्रोताओं, इसी गीत को सुनने के लिए ये कमेंट हमारे पास आया है सहारनपुर से, राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव का। और ये कमेंट है बसमत रोड परभड़ी महाराज से, रणजीत कारेगांवकर, कांचन, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत और इनके परिवार के सभी लोग, वार्ड नंबर 16 गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से, रेखा, पूजा रघुवंशी, नंदनी, शुभा रघुवंशी, बबीता, आराध्या, खुशी, भूमिका रघुवंशी और कुमारी वंदना रघुवंशी।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग और ये पहला गीत शान की आवाज़ में।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 7/8/2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 6/8/2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581-251-7200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट

एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 6/8/2026 को शाम 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुनते हैं आरजू बानो की आवाज में ये गीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग, आकाशवाणी का युवरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम झुमका किरारे। श्रोताओं नमस्कार, आताब। प्रोग्राम झुमका किरारे में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है, खैर मकदम है। और आज हम मौजूद हैं बरेली शरीफ के मोहल्ला सौदागरान में, जहां तशरीफ फरमा हैं आशिक रसूल इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, जिन्हें सारी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। आपका 108वां उर्से रस्बी आज यानी 6 अगस्त से शुरू हो रहा है। साथियों, आपने अपनी पूरी जिंदगी सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारी। आपने 1000 से ज्यादा दीनी खिताबें लिखी। आपने पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र खैर और दीन व मिल्लत के कामों में सर्फ कर दी। आपकी सवान उम्री पर रोशनी डाल रहे हैं दरगाह आला हजरत से वाबस्ता जनाब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब।
1: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की तैयारियां जोर शोर से हैं और 6 अगस्त से उर्स का आगाज होगा। परचम कुशाई से उर्स की तकरीबात का आगाज होगा और ये उर्स 3 दिन चलेगा। 6 अगस्त 7-8 अगस्त को 2:38 पर कुल शरीफ होकर के इस्लामिया ग्राउंड में उर्स का अख्तिताम होगा। दरअसल उर्स की तैयारियां लगभग 1 महीने से चल रही थीं। यहां पर दरगाह शरीफ की तरफ से अलग अलग जो तंजीमें हैं, संगठन हैं, उनकी तरफ से और पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तैयारियाँ बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे की गई हैं। और ये मान करके कि किसी भी जायरीन में से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो, इत्मीनान सुकून के साथ और अमन शांति के साथ उर्स संपन्न हो। आला हजरत की वो शख्सियत है कि यहाँ पर 1856 में पैदा हुए और 1921 ईस्वी में आला हजरत का इंतकाल हुआ। और आला हजरत इल्मी फिक्री शख्सियत थे। उन्होंने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखीं और वो किताबें ज़्यादातर इस्लामियात और शरीयत कानून से मुताल्लिक हैं। और उन्होंने ब्रिटिश राज में रह करके इस्लामी निज़ाम के निफास और इस्लामी उसूलों और जाब्तों पर रह करके तमाम उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दिया। उन्होंने सियासी, समाजी, मजहबी और फिक्री हर मैदान में रहनुमाई की। उन्होंने एक किताब लिखी जो फतावा का मजमुआ फतावा रजविया के नाम से जाना जाता है, वो लगभग 12 जिल्दों में है, जिसमें आला हजरत ने अपनी 63 साल जिंदगी में जो कुछ लिखा, जहां जहां भी फतावे जारी किए, उसका ये मजमुआ है। आला हजरत के दरबार में, उनके दारुलफ्ता में जो फतवा दिया जाता था, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी उन्होंने कोई फतवा लिख करके वापस लिया हो। और खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका में भी आला हजरत के फतावा को एक इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर वहाँ की गवर्नमेंट तस्लीम करती है। और वहाँ आला हजरत के रिश्ते बहुत अच्छे थे। आला हजरत के अहद में भी

0: श्रोताओं, देश विदेश से आने वाले जायरीनों के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और दरगाह आला हजरत में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और आने वाले जायरीन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
1: जी, आपका नाम?
2: मोहम्मद इमरान।
1: मोहम्मद इमरान जी, आप कहाँ से आए हैं?
2: मैं देहरादून से, लगो यूनिवर्सिटी से।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो यहाँ हर साल आप उर्स शरीफ के मौके पर आते हैं?
2: उर्स शरीफ के मौके पर आता हूँ, मैं यहाँ का थोड़ा खिदमत गुजार हूँ।
1: अच्छा
2: जी, मेरी यहाँ कमेटी भी है, मेरी अज्जत नगर साथ कमेटी यहाँ पर रहती है। मेरा हर साल आना होता है हमारे उर्स में, मैं यहाँ पर कम से कम 15 सालों जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो क्या उम्र होगी आपकी इस वक्त?
2: मेरी उम्र है 22 साल।
1: तो इसका मतलब किशोरावस्था से आप यहाँ पर आते हैं, आपकी ये अकीदत है
2: जी
1: कि आप उर्स के मौके पर आते हैं और पूरी खिदमत आपने अंजाम देते हैं?
2: जी बिल्कुल।
1: कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर?
2: बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बस दिल चाहता है यहाँ ही रहो, कहीं जाओ नहीं, दरगाह पे यहाँ खाजर हो, यहाँ ही रहो।
1: यहाँ की जो गलियाँ हैं वो रौनक जी रोज है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग आते हैं
2: जी,
1: और यहाँ से मोहब्बत रखते हैं
2: जी,
1: और आला हजरत साहब की दरगाह पर आते हैं
2: जी,
1: और अकीदत पेश करते हैं
2: जी। बिल्कुल, मैं जितने दिन यहाँ पर रहता हूँ अपने भाई के घर रहता हूँ, कलीला भाई है मेरा, बागाज में सोए
1: जी,
2: उसके यहाँ रहता हूँ। जितने दिन रहता हूँ, जब 15 दिन 10 दिन रह के जाता हूँ, मुझे कंटिन्यू शाम को दरगाह आना ही आना।
1: अच्छा,
2: उसका निजाम का काम है ना भाई का।
1: आप यहीं के मुरीदीन हैं?
2: जी, हुजूर ताज शरीफ का मुरीद हूँ, अब्बा की बहुत खिदमत करी, मैं अब्बा कहता हूँ उनसे, अब्बा।
1: अच्छा,
2: अब्बा की बहुत खिदमत करी है मैंने जी।
1: चलिए, आपसे बातचीत करके हमें बड़ा अच्छा लगा
2: जी,
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी।
0: जी, आपका नाम?
3: जावेद अली हसमती।
0: जावेद अली हसमती जी, यहाँ पर बरेली शरीफ में इस वक्त आप तशरीफ फरमा है, आप यहाँ क्यों आए हैं?
3: यहाँ दरगाह शरीफ में हाजिरी देने।
0: अच्छा,
3: दरगाह आला हजरत के मजार शरीफ में हाजिरी।
0: तो क्या आप हर साल आते हैं यहाँ पर?
3: आते हैं लगभग, कोशिश करके आते हैं, लगभग 10-15 साल हो गया हम आते हैं।
0: ये आला हजरत से आपकी मोहब्बत और अकीदत है कि आप यहाँ पर खिंच चले आते हैं हर साल उर्स के मुबारक मौके पर?
3: जी, उर्स के टाइम में आते हैं, और भी टाइम मिलता है तो और भी टाइम में आते हैं।
0: कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर?
3: बहुत अच्छा लगता है, ईमान ताजा हो जाता है और सब
0: सुकून मिलता है
3: एकदम सुकून।
0: तो नेपाल के आप किस शहर में रहते हैं?
3: कपिल वस्तु जिला, कृष्णा नगर शहर में।
0: तो आप अकेले आए हैं, आपके साथ और भी लोग?
3: दो आदमी हैं।
0: अच्छा अच्छा, कौन?
3: ये सुलेमान
0: जी। आपका नाम?
4: अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सुलेमान खान।
0: मोहम्मद सुलेमान खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप भी नेपाल से आए हैं?
4: हाँ जी।
0: तो आला हजरत साहब की मोहब्बत और अकीदत आपको यहाँ पर खींच लाई?
4: हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मोहब्बत में ही आया हूँ, पहली बार मैं। भाई तो हर बार आते रहते हैं, इन्होंने बोले चलो एक बार, वहाँ जाने के बाद सुकून मिलता है बहुत अच्छे से, इसके लिए मैं भी चले आया। अल्हम्दुलिल्लाह आते जाते रहेंगे, रास्ता मालूम भी हो गया, हमको भी पहले नहीं मालूम था, भाई के लाने की वजह से हमको भी जानकारी हुआ थोड़ा।
0: तो पहली बार आप आए हैं?
4: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार आए हैं।
0: कैसा महसूस कर रहे हैं?
4: बहुत अच्छा महसूस, सुकून।

0: भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
1: यहाँ पर रहने वगैरह की व्यवस्था आपने कहाँ की?
0: नहीं व्यवस्था तो नहीं, हम लोग जाएंगे अभी आधा घंटा बाद, 8 बजे का ट्रेन हम लोग को, पीली भीड़ आए थे हम लोग। नहीं नहीं मुश्किल नहीं, घर पे कोई भी नहीं, हम लोग कल का टिकट हम लोग का है।
1: अच्छा तो आप रिटर्न हो जाएंगे? तो कुल शरीफ में शरीक नहीं होंगे आप?
0: नहीं नहीं।
1: चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
2: श्रोताओं उर्स शरीफ में आए हुए जारीनों से हमने बातचीत की और आज 6 अगस्त को परचम कुशाई से उर्स का आगाज हो जाएगा। तो ये तो था आज का प्रोग्राम झुमका गिरारे। इसी के साथ हमें दीजिए प्रोग्राम झुमका गिरारे से इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम झुमका गिरारी। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।
7: वेलकम बैक दोस्तों, 11:31 का वक्त, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे, आपके साथ है आपकी दोस्त अरुश्री और मैसेजेस का अंबार हमारे साथ। वारिस अली जी ने भी मेल भेजा है और लिख रहे हैं कि बारिश पर तो नहीं लेकिन बारिश से रिलेटेड कुछ लाइंस उन्होंने भेजी हैं, बड़ी गहरी लाइंस हैं, मैं पढ़ के बड़ी इमोशनल हो गई। वारिस जी पहले ही बता रही हूँ मैं, लिखते हैं ये, मोहल्ले में बारिश का पानी उदास है, क्या कागज की नाव बनाने वाले बड़े हो गए हैं, है ना कुछ ऐसी ही बात। तो वही है, कुछ उदासी भरी बात तो ये है कि आज कल हम अपने बचपन को फिर से नहीं देख पा रहे हैं, है ना। अच्छा, हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपना एक बार बचपन अपने बच्चों में फिर से देखेगा, लेकिन हम क्या वो बचपन देख पा रहे हैं? नहीं ना, शायद हमारे बच्चे कागज़ की नाव से ज़्यादा वो मोबाइल ऐप्स पर ज़्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं, है ना। उनकी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गई है, आउटडोर गेम्स कम हो गए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें उन्हें बैलेंस रखना है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम गैजेट्स को उनसे छीन लेंगे तो वो कहीं ना कहीं पीछे भी हो जाएंगे, तो हमें उनको बस बराबर बना बैलेंस बना के रखना है कि कुछ वो समय हमारे साथ हमारे बचपन वाला भी जिए और कुछ समय वो उनके बचपन वाला भी जिए, है ना। रिंकी पिंकी जी का भी मेल आया है, लिखते हैं कि मेरा मैसेज है कि जो लोग एक दूसरे से जलते हैं उन्हें जलने से कुछ नहीं मिलता, मिलता है तो मेहनत करनी पड़ती है, तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। सही, तो बात तो सही है। और एक और मैसेज भेजा है अल्तमश जी ने, लखीमपुर खीरी से मेल भेज रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि बारिश के मौसम में अपना और अपने परिवार का के सेहत का ध्यान भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बारिश में पानी बहुत ही गंदा हो सकता है, तो इसलिए पानी उबाल कर पिएं। बिल्कुल, आपकी ये जो संदेश है वो हमारे श्रोताओं तक पहुँच गया है। मोहम्मद शादाब खान ये हमें मेल भेज रहे हैं संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग मैम, और कैसी हैं आप? बिल्कुल चकाचक, आप सुन रहे हैं मुझे। लिखते हैं बारिश मिट्टी की सोंधी खुशबू, ठंडी हवा, आसमान से गिरती बूंदों का एक खूबसूरत एहसास है जो मन को शांत और तरोताजा कर देता है। अच्छी बात है।

ये है नाजिम रैन, इन्होंने कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं कि बिन बादल बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिना रात नहीं होती, अब कुछ ऐसे हालात हैं हमारे कि आपको सुने बगैर दिन की शुरुआत नहीं होती। क्या बात है, ये दिल्ली इंद्रलोक से हमें सुन रहे हैं और इन्होंने ये जो शायरी भेजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ मेल्स आ रहे हैं लेकिन फिलहाल अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मैं वापस आती हूँ।

कोई कोई मेल्स आई हैं हमारे पास, उसमें ऐसा लिखा है कि ये गाना जो है असर छोड़ जाऊंगा, है ना? तो ऐसे तो असर हमारे प्रोग्राम का पड़ता ही है आप पर, है ना? हमारी बातों का पड़ता है आप पर असर, इसीलिए तो आप संदेश भेजते हैं ताकि आपके संदेश का असर पड़े। मोहम्मद आसिफ जी का मेल आया है, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं। ये संदेश है कि आजकल जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जैसे कि गीले हाथों या नंगे पैर बिजली के स्विच को हाथ ना लगाएं। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए।

बिजली के खंभों से और खुले तारों से दूर रहें और अपने जानवरों को बिजली के खंभों के पास ना बांधें। ये बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अर्थिंग की प्रॉब्लम होने लगती है घर में, तो कभी-कभी होता है ना, आप दीवार भी छूते हैं तो कहीं पे सीलन जहाँ आती है वहाँ पर अचानक से ऐसा लगता है कि बिजली वहाँ पर है, मतलब ऐसा झटका लगता है। तो इसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि घर में इस चीज़ को हिदायती तौर पर बच्चों को ज़रूर समझा के रखें कि वो जो बिजली का प्लग है या फिर स्विच है कहीं से स्पार्किंग हो रही है, तो उन सबसे ज़रूर बचें। कल मैं एक्चुअली ट्रेवल जब कर रही थी तो मैंने देखा एक ट्रांसफार्मर से लगातार धुआं निकल रहा था, तो मैंने वहाँ पर जो आसपास के लोग खड़े थे मैंने उनको बोला कि देखिए पीछे ये ट्रांसफार्मर से धुआं निकल रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, प्लीज़ कोई इस चीज़ का कंप्लेन कर दे वहाँ पर। तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा आपको पता है? अरे ये तो 3-4 दिन से हो रहा है। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि 3-4 दिन से हो रहा है तो किसी ने कुछ किया क्यों नहीं। तो पता चला एक्चुअली में कि वहां पर किसी ने कंप्लेन की ही नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था ये तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अगर इस तरह की चीजों पे आपकी नजर जा रही है और आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे बारे में नहीं पता है, तो प्लीज उन्हें एजुकेट कीजिए, क्योंकि आपकी एक थोड़ी सी सतर्कता, सावधानी आगे जाके ना कई सारी जिंदगियां बचा सकती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। ये तो मेरा संदेश था आप लोगों के लिए। अरुण कुमार कुशवाहा जी का मेल आया है गमोइया हरदोई से। लिखते हैं, तरुषी जी आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत प्यार भरा नमस्कार आपको भी। प्रोग्राम की प्रस्तुति आप द्वारा जो होती है उसका कोई जवाब नहीं। ओ माय गॉड, मेरी तारीफ लिखी है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ये हमें हमारी तारीफ लिख के भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लिखते हैं, हमारा संदेश ये है कि हम लोग जो अपने घरों पर झंडा फहराने जा रहे हैं ये हमारे देश की आन बान और शान है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसे कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है और इसे कब हटाना है और हटाने के बाद भी इसको इसका कैसे ख्याल रखना है। ये बात बहुत सही बात कही आपने और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, जो आपने इस बात पर गौर किया, क्योंकि ये हमारे देश की आन बान और शान है। और जैसे कि 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है हर घर तिरंगा अभियान, तो इस पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जब भी आप झंडा फहराएं अपने घर पर तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसका तरीका क्या सही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर पूछिए किसी ऐसे से जिसको इसका सही तरीका पता हो। और वैसे भी हम लोग बीच बीच में आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि इसके तरीके क्या होते हैं। तो इस पर आपने ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 11:42 का वक्त हो रहा है और अब एक और बढ़िया सा बेहतरीन सा गाना सिर्फ आपके लिए, ओनली ऑन FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप?
6: अच्छे हैं, कट गए सर।
5: अच्छा, अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं आप?
6: कुमार परियार, ग्राम अशनापुर, फोर्ड लखीमपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।
5: हाँ, नाम नहीं समझ में आया, बस फतेहपुर समझ में आया हमें, फिर से नाम दोहरा दीजिए।
6: कुमार परियार, ग्राम अशनापुर।
5: अच्छा ठीक है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी आवाज़ बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे?
6: हाँ सर, सांप नहीं ना सर, हवा निकल जाती है, एक भी सांप नहीं।
5: अच्छा अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
6: संदेश यही कि सर, बारिश का सीजन चल रहा है।
5: हाँ हाँ,
6: मैदान पे अगर हो तो आंधी तूफान आए तो कुकड़ों को बन के अपने आप को बचाएं और सुरक्षित रहें
5: जी। बहुत बढ़िया संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप हमसे जुड़े और आपने ये संदेश आपने सबको पहुंचाया।
6: नाम लेना चाहते हैं?
5: हाँ, नाम ले लीजिए।
6: पिता जी का नाम है श्री अजय पाल सिंह अशनापुर, माता जी का नाम है श्री अशनापुर।
5: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, शुक्रिया। तो श्रोताओं, जैसे कि इन्होंने हमें कॉल करके ये हमसे जुड़े फिलहाल के लिए, और भी कुछ लोग हमसे जुड़ रहे हैं मैसेजेस के द्वारा। तो कुछ मेल्स आए हैं हमारे पास, अशोक कुमार जी का मेल आया है, संदेश है कि बारिश के मौसम में हमेशा साफ या उबला पानी पिएं, फल फूल नहीं कुछ और लिखा है उन्होंने, फुल बाजू के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। जब भी बरसाती या बारिश की बूंदें, ऐसा लगता है, अब मुझे देखिए समझ में नहीं आया इन्होंने हिंदी में क्या लिखा है, जब भी बरसाती है ये बारिश की बूंदें, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने ज़मीन पर खुशियों का पैगाम भेज दिया है। ओके, ऐसे है ये लाइन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल का, और आपका संदेश सब तक पहुंच चुका है।

मुनेश कुमार जी का मेल लखीमपुर खीरी से आ गया है और लिखते हैं कि ये कार्यक्रम दिल को सुकून देता है और आपकी मीठी आवाज, प्यारे गीत सुनकर दिन बन जाता है। क्या बात है, आपको गाने पसंद आ रहे हैं, अच्छी बात है। जो लाइनें उन्होंने लिख के भेजी है वो ये है कि इस बारिश के मौसम में पेड़ मुस्कुराते हैं, हवा से बातें करते हैं और चहचहाते हैं। बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो ऐसा लगता है मानो आसमान से मोती बरस रहे हों। किसानों के लिए एक सीजन की बारिश पेड़ों के पूरे एक साल का भोजन होती है। बहुत सुंदर बात। और मुनेश कुमार राज जी तो हमारे नियमित श्रोता हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता सेठ जी ने भी मेल भेजा है और बहुत बड़ा बड़ा लिख के भेजा है, मतलब फॉन्ट साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा, लिखती हैं, शायद ही दुनिया में कोई जीव होगा जिसे खाना पसंद ना हो, और हम भारतीय तो भोजन के इतने प्रेमी हैं कि बस खाने का बहाना चाहिए। लेकिन इस भोजन प्रेम के बीच में हम कुछ ऐसा करते हैं जो भोजन का अपमान है। शादी हो या पार्टी, पूरी थाली भर लेना और थोड़ा खाकर बाकी फेंक देना, ये अब आम बात हो गई है। तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ लेने का के नाम पर हम किसी भी व्यंजन का आनंद ठीक से नहीं ले पाते हैं और आखिरकार ढेर सारा भोजन फेंक देते हैं, जो कि चिंता का विषय है। ये तो आपने बहुत सही बात कही है कि हम खाने का अनादर ना करें। भोजन जो है ना, वो बहुत मेहनत से उगाया जाता है। किसान से पूछिए कितना दर्द होता है। और सच में जिन लोगों को मैं जानती हूँ, कुछ किसान हम मुझसे भी जुड़े हुए हैं, तो मैं जानती हूँ कि वो कितनी मेहनत करते हैं। तो एक फसल उगाने में कितनी मेहनत लगती है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप भोजन पकाएं, उस माँ या उस गृहिणी का आदर करें जो वो भोजन पकाती है, क्योंकि उसमें उसका मेहनत और प्यार दोनों है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप दिल से महसूस करेंगे तो आप खाना कभी नहीं छोड़ेंगे। तेज बहादुर यादव जी ने भी मेल भेजा है और लिखते हैं कि सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं, सुबह से ही बहुत देर से हमारे यहाँ बारिश हो रही है और हम आपके साथ सुबह से कार्यक्रम सुन रहे हैं। रतन सर जी के सुंदर प्रस्तुति भी हमने एंजॉय की और बारिश का मौसम पे उन्होंने जो लाइनें भेजी हैं वो ये हैं, बारिश का मौसम है प्यारा, भीगा भीगा है जग सारा, बारिश का मौसम है प्यारा प्यारा, काले काले बादल गरजे, लगता है जैसे हमें पुकारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मेल का। वैसे ये मुझे लगा कि आगे भी कुछ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल भेज रहे हैं और ये हमें गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हितांशी यादव ने भी मेल भेजा है और लिखती हैं, बूंदों की तरह गिरकर संभलना भी जरूरी है, जिंदगी की बारिश में हर पल निखरना जरूरी है। बहुत बहुत सुंदर लाइन, धन्यवाद आपके इस मेल के लिए। ये गुड्डन यादव जी हैं और इन्होंने हमें जलमऊ रायबरेली से मेल भेजा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग हमें कहाँ कहाँ से मेल भेजते हैं और सच में पढ़कर सुनकर, आपकी मेल सुनकर, पढ़कर और आपकी संदेश सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद करती हूँ कि यही जो प्रोग्राम को एंजॉय आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि गानों का सिलसिला भी ऐसे ही था कि मैं कुछ कोशिश कर रही थी कि आपको ऐसे ही सुंदर गाने आपको सुनाती रहूं। और आपको मैं बता दूं कि अब इस प्रोग्राम का आखिरी सॉन्ग मैं आपको सुनाने जा रही हूं, क्योंकि इसके बाद मैं बोलूंगी टाटा बाय बाय और अगले कुछ प्रोग्राम के लिए आप तैयार रहिए। जी हाँ, इसके बाद शत्रुपा प्रोग्राम आप सुनेंगे और हमारे साथ आपको यूं ही बने रहना है, सुनते रहना है FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: और इसी के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं शालिनी जी, जो कि आपके साथ रहेंगी अभी 12 बजे से।
1: हाँ, और हम चाहेंगे कि तरु थोड़ी देर और रहो।
0: इंजॉय चल रहा है, इंजॉय जो कर रहा है, ये गाना इंजॉय कीजिए आप, और मैं कहती हूँ टाटा बाय बाय।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा।
4: जानो फिर मानो।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में डीनोटिफाइड नोमैडिक एवं सेमी नोमैडिक ट्राइब समाज के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश घुमंतु विकास बोर्ड के गठन के निर्णय पर श्री योगी का आभार व्यक्त किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास का मंत्र समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान का कारण बना है। डबल इंजन की सरकार ने इन समुदायों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट के विधायक थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश के सभी जनपदों में 9 से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल बताया कि इस वर्ष 5 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य है। श्री सिंह ने बताया कि प्रथम चरण के दौरान स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियां सजाई जाएंगी। श्री सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा 2026 को जन आंदोलन, जन भागीदारी तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना से आयोजित किया जाए। आगामी 24 घंटे के मध्य प्रयागराज सहित कई जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने तथा हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। यह पूर्वानुमान मौसम विभाग के विज्ञान केंद्र लखनऊ ने जारी किया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि वर्तमान समय में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। यमन के हूती ग्रुप के अदन की खाड़ी में सऊदी के एक तेल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया गया है। हूती से सैन्य प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह हमला सऊदी अरब की नाकेबंदी के विरोध में किया गया है। हूती बलों का कहना है कि यह दक्षिण और उत्तरी लाल सागर से सऊदी के तेल टैंकरों को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक यमन के हूती नियंत्रित इलाकों से नाकेबंदी नहीं हटा ली जाती। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

12:03 और 50 सेकंड का वक्त, बारिश के इस खुशनुमा मौसम में आप सभी का स्वागत कर रही है शालिनी। जी हाँ, एंजॉय कर रहे हैं आप सभी लोग मौसम का, क्यों? क्योंकि कई दिनों से तो देखिए बादल की ओर ही हमारी निगाहें थी, और ये जब बादल गरज चमक के साथ आते हैं, घनघोर घटा लाते हैं, और जब बरसते नहीं है तो बहुत तरस आते हैं, है ना। लेकिन आज तो बरस रहे हैं और प्यार भी अपना दर्शा रहे हैं, और हम सबको गर्मी से राहत भी दिला रहे हैं, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो इस चीज के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। और ये जो अति की बात की है हमने, इसको कहाँ से लेकर कहाँ पर ख़त्म करना है, आपको पूरे प्रोग्राम में पता चलने वाला है, क्योंकि आज है थर्सडे, और थर्सडे को हम आपको

0: बताते हैं कि आप कैसे अपने घर को सजाएंगे, कैसे आप बागवानी कर पाएंगे, कैसे अपने पेड़ पौधों का ख्याल रख पाएंगे। और कई बार हम ऐसी गलती कर जाते हैं जो खुद में पता ही नहीं होती, या यूं भी कह सकते हैं कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम बहुत ज़्यादा प्यार जताने की कोशिश करते हैं और वो गलती में बदल जाता है। तो कुछ इस तरह की आज होने वाली है बातें प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी के साथ। खासकर उन्हें ध्यान से सुनना है जो पौधा प्रेमी है, जी हाँ, जिन्हें पेड़ों से पौधों से बहुत प्रेम है। तो हमारे साथ बने रहे और सुनते रहे 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की, और ये प्यारा से ट्रैक आप सब के लिए बारिश पर।
1: ये एक छोटे से शहर की छोटी सी कहानी।
2: तुम्हें इस वक्त

आज मैं आपको एक ऐसी गलती बताने जा रही हूँ जो लगभग हर दूसरा पौधा प्रेमी करता है। जी हाँ, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पौधे को जितना ज्यादा पानी देंगे उतना ही ये अच्छे से बढ़ेगा, लेकिन पता है सच्चाई इसके

बिल्कुल विपरीत है। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे पानी की कमी से नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा पानी देने से खराब होते हैं, और ये हम सबको कम पता होता है। फिर आपको क्या करना है पता है? जब गमले की मिट्टी लगातार गीली रहती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जड़ें सड़ने लगती हैं और धीरे धीरे पौधे ऊपर से तो हरे दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर मरने लगते हैं। तो एक आसान सा नियम आपको याद रखना है, उंगली को लगभग 1 इंच मिट्टी में डाल कर देखें, अगर मिट्टी अभी भी नम है तो पानी बिल्कुल ना दें, और जब मिट्टी सूखी महसूस हो तभी सिंचाई करें। और यकीन मानिए, सिर्फ ये एक आदत बदलने से आपके आधे पौधे बच सकते हैं। पूरे की तो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा कॉमन कारण है वो यही है। इसीलिए हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था, हम ज्यादा प्यार जताते हुए न जाने कितनी गलतियां कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है ना। तो ये प्यारा से ट्रैक आप सबके लिए है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और बहुत खास वाली बात, जी हाँ, बारिश के मौसम में पौधे की जो पत्तियां होती हैं हमेशा गीली रहती हैं, और जब वो गीली रहती हैं तो उन पर फफूंदी यानी कि फंगल संक्रमण लगने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, और इसीलिए जब बारिश रुक जाती है तब ये अगर आप कर सकें तो पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहां पर हवा का अच्छा संचार हो, यानी कि जो पत्तियों पर पानी जमा हुआ है वो सूख जाए, और अगर वो पानी नहीं सूखता है तो उनमें रोग लग सकता है। अगर आपके गमलों में छोटे छोटे सफेद कीड़े या फंगस दिखने लगे हैं तो आपको उसमें तुरंत कोई रासायनिक दवा डालने की जरूरत नहीं है। एक आपको हम उपाय बता रहे हैं, उसे आजमाएं और उसे पहले डालें तो देखिए कितना फायदा होता है। आपको करना क्या है, 1 लीटर पानी लेना है, हाँ, और लगभग उसमें 5 मिलीग्राम शुद्ध नीम का तेल लेना है, मिलीग्राम, और कुछ बूंदे हल्का लिक्विड साबुन मिला लेना है, और शाम के समय पत्तियों के ऊपर और नीचे स्प्रे कर देना है। स्प्रे होता है ना, फुसफुस। तो इससे क्या होता है, जो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, कीट होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको हम कंट्रोल में कर लेते हैं। तो जब हम इतने आसान तरीके से जो कीट हैं उनको कंट्रोल में कर सकते हैं तो क्यों हम केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधों पर करें, है ना। नाजुक होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, जिनका हम सभी ख्याल रखते हैं।

सुनकर थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन कई लोग मानते हैं कि पौधों की नियमित देखभाल और उनके साथ समय बिताने से वो बेहतर बढ़ते हैं। जी हाँ, और वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि जब हम पौधों के पास समय बिताते हैं तो उनकी ज़रूरतों जैसे कि पानी, धूप या जो भी रोग उस पे लग रहा है, हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, जिससे कि हम उनकी देखभाल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं।

नेक्स्ट टाइम जब भी आप पौधे में पानी दें तो सिर्फ ये सोचकर पानी नहीं देना है कि ये काम है तो चलो जल्दी जल्दी पूरा कर लें। 2 मिनट ठहरिए, उनकी पत्तियों को देखिए, नए कोपलों कुछ पहचानिए। अक्सर पौधे अपनी जरूरतें हमें संकेत से बता देते हैं। अगर पौधा बोल सकता होता तो शायद कहता कि मुझे बचा लो, लेकिन पौधे अपनी भाषा में संकेत देते हैं। जी हाँ, अगर नई पत्तियाँ छोटी आने लगें, अगर किनारे भूरे होने लगें, अगर पत्तियाँ नीचे की ओर झुक रही हैं, अगर नई बढ़वार रुक रही है, तो समझ जाइए कि पौधा किसी समस्या से जूझ रहा है। इसीलिए सिर्फ फूलों को मत देखिए, पत्तियों को भी पढ़ना सीखिए। बहुत से लोग ऑफिस से लौटकर जब आते हैं तो रात में पौधों को पानी देते हैं और उनको लगता है कि चलो जब टाइम मिला तब ये काम कर लिया जाए। लेकिन अगर मौसम पहले से ही नम हो तो रात भर गीली मिट्टी और पत्तियां फंगल रोगों का खतरा बढ़ा देती है। बेहतर है कि पानी सुबह जल्दी या शाम को सूर्यास्त से पहले दिया जाए ताकि जो अतिरिक्त नमी है वो निकल सके, है ना। तो इन सारी बातों पर ध्यान देंगे ना नेक्स्ट टाइम से, जरूर। अभी और भी चीजें, छोटी छोटी सी गलतियां जो हम करते हैं, आज हम उन्हीं को लेकर आए हैं।

बारह बजकर 33 मिनट और 10 सेकेंड प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ लेकर आज प्यारे प्यारे से पौधों की बात। अच्छा, इस महीने में या इस महीने की शुरुआत में ही आपने बहुत सारे पेड़ पौधे खरीदे होंगे। हाँ, अब आप कहेंगे इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, ऑब्वियस सी बात है, खरीदे ही होंगे। लेकिन नई गलती, लोग छोटा पौधा खरीदते हैं और तुरंत बहुत बड़े गमले में लगा देते हैं, यानी कि गमले बड़े खरीद लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले 5 से 7 दिन उसी नर्सरी वाले गमले में रहने दें उस नन्हे से पौधे को, ताकि वो नए वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सके। आप ही जरा सोचिए, जब कहीं आप बाहर जाते हैं घूमने फिरने ही, चाहे कहीं की बात कर लीजिए, जब जैसे ही आपका घर चेंज होता है तो आपको अनकंफर्टेबल मालूम पड़ता है, होता है ना। तो और दूसरी बात, अगर आप बहुत बड़े गमले में लगा देंगे उस नन्हे से पौधे को, तो ऐसे में क्या होता है, मिट्टी लंबे समय तक गीली रहेगी और उसकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। और हमेशा पौधे से थोड़ा ही बड़ा गमला खरीदना चाहिए सभी को। और फिर क्या, उसके बाद आपने, अच्छा एक बात और ध्यान दिया है, आपने कभी अपने पौधों की पत्तियों को साफ किया है? आप करते हैं? अच्छा, आप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पत्तियों को भी साफ करना है। चलिए, अभी तक आपने नहीं किया है तो अब से, आज से ही इस काम को भी

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:40 और 44 सेकेंड प्रोग्राम शत्रुपा में बात हो रही है पौधों की। और अभी हमने बात करी थी कि क्या आप पौधों की पत्तियों को भी साफ करते हैं, उनके ऊपर जो धूल जम जाती है। पता है आपको, धूल जमने से पत्तियों तक रोशनी कम पहुंचती है, और जब ऐसा होता है तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो प्रभावित हो सकती है। तो आपको क्या करना है, गीले मुलायम कपड़े से पत्तियां हल्के हाथों से साफ कीजिए। ज्यादा खाद मतलब ज्यादा पौधा, इस सोच को बिल्कुल बदल दीजिए। जरूरत से ज्यादा खाद जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पौधे को भोजन भी संतुलित मात्रा में चाहिए, जैसे कि हम आप सभी से कहते हैं कि हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट। तो आपको पौधे की भी खान पान का ध्यान रखना है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि जो घर में चाय पत्ती निकलती है, जो जब चाय बनाते हैं, जब छान लेते हैं और उसे बहुत अच्छे से तुरंत पौधे में डाल देते हैं। कितना ख्याल रखते हैं ना आप पौधे का, क्योंकि वो जो चाय पत्ती है वो खाद बन सकती है। लेकिन जब आप चाय बनाते हैं तो कई बार आप उसमें इलायची भी डालते हैं, लौंग भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, और जब चाय आप छानते हैं तो तुरंत अगर आप डाल देते हैं तो आपको ध्यान रहे वो गर्म भी रहती है। अगर आप तुरंत नहीं डालते हैं, किसी चीज़ में आप इकट्ठा कर रहे हैं उसके बाद आप डालते हैं, तो उस चाय पत्ती में जो आपने दूध भी डाला है, जो आपने चीनी डाली है, उसका भी अंश रह जाता है ना। अब समझ में आ रहा होगा ना कि शालिनी किस बात पर आ रही है। तो बस आपसे कहना इतना है कि जो रोज़ की चाय की पत्ती है, फेंकने से पहले या पौधे में डालने से पहले उसे अच्छी तरह से धो लें, ताकि उसके अंदर की जो बची चीनी है या दूध है वो ना रह जाए। और फिर क्या करना है आपको, फिर उसे सुखा कर खाद में मिलाना है या खाद बनाना है, और ये मिट्टी की संरचना सुधारने में बहुत हेल्प करता है। तो बस ध्यान रहे कि गीली चाय की पत्ती सीधे गमले में ना डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फफूंदी भी लग सकती है। फिर आप कुछ मत कहिएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:52 और ये देखिए 53 मिनट हो चले हैं और इस वक्त को क्या करते हैं हम लोग प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तैयारी करते हैं। तो उससे पहले हम आपको जब घर के प्यारे से गाने की बात कर ली तो बता दें कि जो घर के कमरा होता है, घर का कमरा, हर एक कमरे को अलग अलग तरीके से हम लोग उसे सजाते हैं, संवारते हैं, क्योंकि वो कुछ अट्रैक्टिव दिखे। और साथ ही साथ क्या करते हैं, बहुत से लोग महंगे शोपीस भी ले आते हैं रखने के लिए। इंटीरियर डिजाइन का एक आसान नियम हम आपको बताएं, 3 का नियम, रूल ऑफ 3। अगर किसी टेबल पर सजावट करनी है तो 3 अलग अलग ऊंचाई की चीजें साथ में रखना है। जैसे कि एक आपने लंबा पौधा रखा तो एक उससे छोटे आकार की मोमबत्ती रख दीजिए और उससे छोटी कोई और सजावटी चीज रख दीजिए। तो जब 3 अलग अलग तरह की चीजें कमरे में रखी होंगी तो कमरे को वो संतुलित करेंगी और आकर्षक भी बनाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा जब नेक्स्ट टाइम कभी आप कोई कमरा सजा रहे हो। और इसी के साथ शालिनी इस प्रोग्राम को करती है यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम और छुपे तेरी बात में शालिनी फिर है आपके साथ और आप भी रहेंगे हमारे साथ ईमेल के जरिए। fmakashwani@gmail.com पर आपको मेल करना है कि जो आज ये लगातार बारिश हो रही है इसे आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो फटाफट हमें ईमेल करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कार्यक्रम अनुरोध गीत में हमारे सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ, जिसको पसंद किया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और साथ में हैं मस्तान बाबा। आपने सुनना चाहा है अल्लाह रखा फिल्म का ये गीत आशा भोसले और प्रयागराज की आवाज़ में। गीत है प्रयागराज का और संगीत अनु मलिक का। इसी गीत को सुनने के लिए ढेर सारे ख़त हमारे पास आए हुए हैं। ये ख़त है हमारे पास गंजडंडवारा से मोहम्मद फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, शमा परवीन शेख, अलकमर बेगम, अफसाना महजबी, पप्पू भाई, मिर्ज़ा नसरीन बेगम और अरहान शेख। आप हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, बीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रमापुरी, आरएसपुरी, लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू, धनक्ष आरू साहू और परिवार के सभी लोग। आप हैं हमारे श्रोता बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, बिक्की भारद्वाज, अमान, जैद इसरार भाई, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल, नमन और उमा शंकर। ये खत हमारे पास आया है फूलबाग किला छावनी बरेली से विशेन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त भारद्वाज, गंगा दत्त भारद्वाज, बिक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज, श्रीराम राठौर। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। आप हैं हमारे श्रोता कटरा चंद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। बूरसूदा से आप हैं भगरानी संतोषी सेन, चंद्र प्रकाश, नेहा सेन, गजेंद्र चिराग सेन। आप हैं धमतरी से रामचंद्र मखीजा काफिर, श्रीमती सविता मखीजा, बीबी स्वाति मखीजा और मखीजा परिवार के सभी लोग। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। पुराना तालाब टुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, इनकी प्यारी बिटिया सोनम। सरीमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, खात्मा फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा बिहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। आप हैं जमशेदपुर झारखंड सुपाही साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जी। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक और ढींगरा। गंजडंडवारा से मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बेगम, अरवाज खान, शाहबाज खान, सूफिया महबूबा, अफसाना बेगम, महजबी शेख, बादाम अली, किशमिश जहां। आप हैं छावनी अशरफ खान पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना देवी, मनोरमा देवी, अजय वंश कनिष्का और आपके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म अल्लाह रखा का ये गीत आशा भोसले और प्रयागराज की आवाज़ में।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर का 1 बज चुका है, तो आइए अब सुनते हैं आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं नमस्कार।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 7/8/2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 6/8/2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 6/8/2026 को शाम 4 बजे, यानी आज शाम 4 बजे। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। ये खत हमारे पास आया मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी लोगों का। आपने सुना चाहे फिल्म धर्मवीर का ये गीत मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश आप हैं हमारे श्रोता। गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछार जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र धांसू, छोटू नामदेव, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता नामदेव और समस्त नामदेव परिवार। बुड़गैन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और लक्ष्मीकांता प्रजापति आप हैं। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, उत्कर्ष नेताम और प्रोनामिका ये खत हमें भेजा है। कस्बा बिलसी वार्ड नंबर 5 से ठेकेदार रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, जानवी अलवी, हानिया अलवी, नजाकत अलवी, शाहीन बेगम अलवी, आहिल बाबू अलवी, आदिल अलवी। कृष्णानगर टीवी टावर, सेमिनरी हिल्स, नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल डोंगर दिवे आप हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, राही सरिता गुहाड़कर, सिद्धांत गुहाड़कर, एकांश गुहाड़कर, विश्वकर्मानगर नागपुर से शैलेश गुहाड़कर, वैशाली, सुमित, ध्वनि गुहाड़कर और गुहाड़कर परिवार के सभी लोग। बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चढ़ौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा आप हैं। फजलिका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, ट्वांसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह और खेड़ा परिवार के सभी लोग। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा आप हैं। पप्पू भाई, सलीम भाई और इनके सभी साथी राजेंद्र नगर निकट तालाब के पास डेला पीर रोड जिला बरेली से ये खत हमें भेजा है। हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर का बेडी से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म धर्मवीर का ये गीत मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाज में।

फिल्म का नाम है प्यार का मंदिर, आवाज़ है सुरेश वाडिकर मोहम्मद अजीज़ की, गीत है आनंद बख्शी का और संगीत बद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अनुरोध करता है जिला बदायूं ग्राम दूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल, संगम बिबू, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। आप हैं कासिम कॉलोनी सनाबद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शबी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरवान मीना, कासिम मीना और हाशिम मीना। आप हैं रजत कुमार भूड़ बरेली से, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, कस्बा शीशगढ़ मोहल्ला गौड़ी से, गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, तहसील जाफराबाद जिला जालनाहुन से श्री सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जागुताई, संचित प्रथमेश, सोहम, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और इनके सभी साथी। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू स्वर्णकार एवं समस्त स्वर्णकार परिवार। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सलीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एच डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मेराज अंसारी और इनके परिवार के लोग। आप हैं सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलठाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा नरवाडे, आकाश कुमार। हररपुर मटकली से शाहरुनूर अंसारी और मोइन अंसारी और सलमान अंसारी। शीतल रेडियो श्रोता संघ बहरामपुर टीमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, आर्यन राज, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। कस्बा सिंधौली से ये खत हमारे पास आया, जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम और गुड़िया, गड़िया मोहल्ला मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमशी, मोहम्मद अजीम शमशी, मोहम्मद सलीम शमशी, मोहम्मद नवैद शमशी, रजिया शमशी और राजा बाबू। आप हैं गंगवार रेडियो श्रोता संघ ग्राम दलपतपुर पोस्ट चटिया जिला बरेली से ओमपाल गंगवार, अनिता गंगवार और इनके मम्मी पापा ग्राम पिपरिया पोस्ट नगरिया सोबरनी जिला बरेली से अमन गंगवार, आशा गंगवार, संध्या गंगवार और छोटे लाल गंगवार। तो आइए सुनते हैं फिल्म प्यार का मंदिर का ये गीत मोहम्मद अजीज और सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

से वार्ड नंबर 6 अवला बजरिया से मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, आप हैं कस्बा शेरगढ़ ग्राम टांडा से मोहम्मद उमर इदरीसी, परवीन, नेहा, निदा, शना, आलिया और मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद कमर इम्तियाज इदरीसी, परी महल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, असलम सैफी, ए खान, गंज डुंडवरा से शमशुल कमर रही, जाहिद अली, आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीट बेबी काव्या, जयपाल यादव, शीशगढ़ बरेली से लियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी और इदरीसी परिवार के सभी लोग, आप हैं ऊंची मस्जिद उत्साह से चांद मियाँ, तबस्सुम, असद सत्तार, शाहजहां, अली बाबा, मर्जीना, अलबख्श, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मीका बिरक। तो आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गीत है एस एच बिहारी का, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध की। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:40 और 30 सेकंड हुए हैं।

और ये खत हमारे हाथ में है बिमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शोभुल्ला, बुक्कुन कुन, रीना, नीरज, बक्सिना, दातागंज, बदायूं से। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, गणेश शर्मा, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, पवन शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता शर्मा, पंकज शर्मा, वीर शर्मा, संदीप शर्मा, चंचल शर्मा, चिंकी शर्मा, सूरज शर्मा और शर्मा परिवार के सभी लोग पुराना होली चौक ग्राम करगना बरेली से। आप हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसाबा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, सोनी यादव, अंकिता यादव, विनीता यादव, अनीता यादव, सुनीता यादव, सूरजश्री यादव। वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से आप हैं प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल वाशने, प्रभात कमल, अमरीश कमल, सलोनी कमल, सचिन कमल, नीरू कमल, देविका कमल, कार्तिक कमल, वेदरिजा कमल और ऐश्वर्या कमल वाशने। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। दौलतबाग मुरादाबाद से आप हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली। लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। प्रभा सिनेमा के सामने से आप हैं अशोक जायसवाल, दुर्गा प्रसाद और इनके सभी साथी। ये खत हमारे पास आया है हरी सिंह, रेकी सिंह, मीना सिंह, टीना सिंह, प्रिया सिंह, मेघा सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य बरेली कैंट से। आप हैं हमारे श्रोता ग्राम बुटला दौलतपुर पोस्ट उजानी जिला बदायूं से टिंकू भाई उर्फ भास्कर भाई, शुभम कुमार, मोहित माथुर, योगेंद्र माथुर, कुमार पाल माथुर, रुपेंद्र माथुर, नीटू शर्मा, रीटू शर्मा, केके शर्मा, चोप सिंह शाक, आशीष शाक, रमेश साहू, मोनिका माथुर, अनिष्का माथुर, रमेश चंद्र यादव, मुस्कान यादव, सुशीला कुंज, प्रिया, पवन विहार बरेली से। परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। तो आइए सुनते हैं फिल्म नागिन का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत है वर्मा मलिक का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म का नाम है गिरफ्तार, आवाज़ किशोर कुमार मोहम्मद अजीज की और फरमाइश आप सभी की चंडीगढ़ से सतीश अनिजा बिमला अनिजा। आप हैं गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांडा, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से, करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापत। आप हैं खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार। और ये खता हमारे पास आया है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी लोगों का। गांव चौराहा बागपत से संजय डींगिया, नमन डींगिया, मुस्कान कुणाल और इनके परिवारीजन।

मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से पन्नी लाल सागर बेनी सिंह मासूम धर्मवीर बनमौजी आशीष कुमार सागर अमर सिंह हितेश बंटी रूबी भारती रचना भारती एकता भारती दिव्य भारती ममता चौधरी श्रीमती ओमवती भारती बेटी खानक नकुल लैंसी और सारांश आप हैं ग्राम पजौनिया तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र चंचौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक और आराध्या चंचौलिया।

ये जो दिया है मैं भी जिंदा हूँ, कोई हम दोनों को जुदा ना करे, जुदा हम हो कभी खुदा ना करे, होते हमारे हो

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है स्वदेश 94 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रसरंग। रसरंग में ये पहली गजल भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

इसी के साथ प्रसारण कार्यक्रम अब संपन्न होता है। 100.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते

मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और